0: भाई मैं तो नहीं रो रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सभी लोग सुन जरूर रहे हैं गाना। और दिस इज 7:06, दिस इज एपी द हिप्पी ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM। एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज? इट इज द टाइम फॉर एन इवनिंग इन डैलस। यस यू गाइस, लॉट्स ऑफ इनक्रेडिबल ट्यून्स, लॉट्स ऑफ मस्ती, लॉट्स ऑफ चिट चैट, लॉट्स ऑफ गॉसिप एंड लॉट्स ऑफ ग्रेट ग्रेट म्यूजिक। तो अगले 3 घंटे लेट्स हैव सम फन, बिकॉज दैट्स द वे वी डू इट।
1: The way we do it. It's the way we do it.

एंड वी आर बैक. ये नेक्स्ट वाला गाना वसीम जी के लिए, वसीम जी अपनी वाइफ फरीदा जी के लिए बड़ा प्यारा सा एक आतिफ असलम का गाना डेडिकेट करना चाहते हैं. ये मेरी पसंद का आतिफ असलम का गाना, दिस वन्स कॉल्ड जल परी, क्योंकि आई एम श्योर फरीदा जी भी आपकी जिंदगी में जल परी जैसी ही है.

भाई सांसों में समंदर हो या दिल में धुआं हो, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है और उसके बाद धुआंधार सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट, डोंट वरी, उमर ख्वाजा जी इज राइट देयर। फर्स्ट कॉल द कॉप्स एंड देन यू जस्ट गिव अ कॉल टू उमर ख्वाजा जी, स्पेशली इफ यू बीन इन्वॉल्व इन अ कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट। लेट उमर ख्वाजा हैंडल ऑल योर पर्सनल इंजरी प्रॉब्लम्स एंड द लीगल बैटल while you focus on physical and mental healing, and you can be entitled to the compensation that you truly, truly deserve, and you don't have to pay anything unless you actually win the case. Call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. Bhaiyo aur behno, it is 7:21 on the clock. अभी हम थोड़े से गाने और सुनेंगे और आज का हमारा गाना, जैसे हम लोग पिछले 2 दिन से, एक्चुअली मंडे से हम बात कर रहे थे अराउंड 9 बजे अराउंड के करीब, वी वर टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट डिस्कशन ऑन ट्विन फ्लेम्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इन द सेपरेशन फेज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड बाय द वे, आपको पता है ना, आजकल लूनर इक्लिप्स होने वाला है। अपेरेंटली इट्स लाइक अ ब्लड मून लूनर इक्लिप्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो लुक आउट इन द डैलस स्काईज, आपको पता नहीं, शायद कुछ बड़ा अच्छा दिख जाए। आई मीन यू नो इट्स लाइक अ सिग्निफिकेंट टाइम, एंड इफ यू आर अ वर्गो लाइक मी, अपेरेंटली दिस एंड्स लाइक सम काइंड ऑफ अ डेकेड लॉन्ग थिंग्स। देर विल बी नो मोर इक्लिप्सिस इन द साइंस ऑफ वर्गो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स थिंग्स विल बी रियली स्मूथ एंड वेरी इवेंटफुल। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट गाइज। तो वॉच आउट, मे बी सम थिंग्स अबाउट टू हैपन इफ योर लाइफ इज नॉट हैपनिंग दैट इज। तो ये गाना सुनते हैं, देन वील कम बैक एंड टॉक सम मोर।

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
2: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
2: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
2: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं ही।
9: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।

गाइज, अगर आपको वो गाना पसंद आया, दैट इज बाय दिस न्यू आर्टिस्ट. शी इज फेयरली न्यू, बट आई थिंक दैट सॉन्ग इज प्रीटी गुड. हिंदी में जैज वैसे भी कम होता है, बट अगर अच्छे से बनाया जाए तो बहुत सही बन सकता है. दैट वॉज डोयल दास विथ हर सॉन्ग इरादे, एंड इट इज एट 74,000 व्यूज. सो होपफुली शी मेक्स इट बिग वन डे टू.

उस इंटेंस गाने के साथ मुझे ये भी बताना है कि अगर आप H1, F1 या L1 वीजा पे हैं या कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं एंड यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, दैट इज योर ग्रीन कार्ड, देन लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. डिड यू सी द न्यूज यस्टरडे? अपेरेंटली द USCIS हैज अनाउंस दैट देर आर 46 न्यू लाइक positions open for EB1, EB2 and EB3. Exactly, 41 new slots. I don't know, what do you call it? Slots, I guess. They are giving 41,000 or 46,000. I don't remember. It's a lot, basically. So, if you plan in any of these categories, then do call up Seema Mehta. And she and her team, they especially specialize in EB5, investor visas, family and employment visas, employment visas, sperm labor certification and much more. ठीक है? And US citizenship. For more information on the EB5 investor visa program, call or email info@seemamehtalawfirm.com.

भाई आज पता है मेरे इंस्टाग्राम पे क्या फीड आया? देर इज अपेरेंटली सम सैंडविच शॉप ओपन्ड, ठीक है, इन मध्य प्रदेश एमपी में एक नई सैंडविच शॉप खुली है. पता नहीं सैंडविच शॉप का नाम अभी, और चीफ गेस्ट में पता है किसको बुलाया उसका उद्घाटन करने के लिए उस दुकान को? 12 लाख के जो वो रोबोट्स नहीं हो रहे जो नाचते हैं रैंडमली आजकल पूरे इंस्टाग्राम और हर जगह वो वीडियोस दिखा रहे हैं ना, वो ऐसे ही रोबोट, एक अजीब सा सिल्वर कलर एंड सिल्वर एंड ब्लैक कलर का स्टिक फिगर रोबोट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसको बुलाया 12 लाख दे के उद्घाटन कर रहे. भाई इतने पैसे हैं हमारे देश के पास कि असली इंसान को भी नहीं बुला रहे, अब तो हम सीधा AI पे डिपेंड हो रहे इतना ज्यादा. बट दिस इज यू नो इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, राइट? आई टोटली अग्री विद दैट.

यारो दोस्तों, इट इज 7:54 ऑन द क्लॉक। इसका मतलब है हम 5 मिनट में ब्रेक में जाने वाले हैं। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप भूल मत जाना कि 8 बजे के बाद हमारा होता है गिव अवे का टाइम। तो कम बैक अराउंड 8:05 फॉर द गिव अवे। और बाय द वे, कल यार रक्षाबंधन है, तो लास्ट दिन है चौक टॉक कैसीनो में रक्षाबंधन का गेम खेलने का। तो इसीलिए डोंट वेट एंड जस्ट रीच आउट टू चौक टॉक कैसीनो। अगर आपकी कोई बड़ी अमेजिंग सी स्टोरी है अपने सिबलिंग्स के साथ, देन यू नीड टू सेंड अस अ वॉइस नोट, 1 मिनट वॉइस नोट, इट कांट बी मोर देन 1 मिनट, एट 214-837-7147। और अगर आपकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है तो आप बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, जैसे कि डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजोर्ट स्टेज एंड ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल कुंभ के मेले से भी बड़ा सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौक टॉक कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ट। सो फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, फनेशिया के सोशल मीडिया पेजेस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन बच्चा लोग, यू हैव टू बी 21 एंड ओवर टू पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर आप 21 के नीचे हैं तो आप प्राइज तो शायद जीत जाएंगे लेकिन आपके मम्मी पापा इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि अंडर 21 बच्चों को अलाउड नहीं होता कैसीनो। मैंने ट्राई किया हुआ है, डोंट बी लाइक मी, ओके? तो नहीं तो वापस आना पड़ेगा, इतनी दूर जाओगे ड्यूरॉन्ट जाके वापस आना पड़ेगा, दैट्स काइंड ऑफ अ फेल, है ना? इसीलिए तो गाइस, कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बड़ी अच्छी सी स्टोरी हमें भेज दीजिए, बड़ी मज़ेदार। और पता है मेरी स्टोरी क्या है? मेरी सबसे इंटरेस्टिंग सिबलिंग स्टोरी ये है। वैसे तो मेरा कोई भाई है नहीं, कजन्स हैं काफ़ी सारे और एक मेरी बड़ी बहन है, ठीक है? बट आई विल टेल यू द मोस्ट अमेजिंग स्टोरी। आई मेट अ पर्सन ऑन अ डेटिंग ऐप और 2 साल पहले यहीं पर डालस में, और उसके साथ मैं डेट वेट पे गई। फिर डेट वेट पे जाने के बाद उसने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ना बहन मिल गई अपनी। एंड दिस इज नॉट अ लाई, दिस इज 100% ट्रू स्टोरी। तो भाई गई तो मैं डेट पे थी, यू नो, बम्बल पे मैच करके, लेकिन मुझे मिल गया भाई। और जो मेरा बड़ा अच्छा भाई है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ी हेल्प करने पहुंच जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कई बार आपको डेटिंग ऐप से दूसरे रिश्ते भी मिल जाते हैं। तो कीप योर ईयर्स एंड आईज एंड योर हार्ट ओपन, ओके? यू नेवर नो, इफ आई कुड पार्टिसिपेट आई वुड टोटली सेंड दैट वॉइस मेमो टू दिस नंबर, बट आई वर्क हियर सो आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, बट यू कैन शेयर योर स्टोरी।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज 3 ईटरी?
3: No, not another restaurant again.
4: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
3: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
5: Page 3 ईटरी. Eat, sip, gossip, repeat.
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
7: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
7: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
7: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
9: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
0: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकमिंग चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
14: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
13: And pistachio lamb chops,
14: full on flavor ka fusion.
15: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं।
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं।
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
18: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
0: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
19: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
20: Sathiya!
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
22: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर

0: 26th, 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
1: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.
2: भाई वो तो सिर्फ टेस्ट था, कोई बात नहीं, हम तो वापस आ गए हैं ना। तो गाइस एक गाना सुनते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम खेलेंगे हमारा गिव अवे गेम। दैट इज राइट। तो ये आप एंजॉय करिए, एड शीरन विद द ट्रैक सैफायर फीचरिंग अरिजीत सिंह।

गाइज, हीरा हो, पन्ना हो, सैफायर हो या जो भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे ही चमकते हैं। चमक तो हमारे दिल में होती है यार, है ना। सैफायर एंड ज्यूल्स एंड डायमंड्स तो वो सब बाहर की बात है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि तो कुछ देर बाद हम तनिष्क का ऐड भी बोलेंगे, तो आई शुड डेफिनेटली नॉट से दैट। हाउ एवर गाइज, इंस्टेड ऑफ मेकिंग बैड जोक्स हियर ऑन द रेडियो, लेट अस गेट टू आवर गिव अवे गेम। आज का हमारा गिव अवे है फ्रॉम फूडिस्तान। एग्जैक्टली, इफ यू आर इन द ऑबरी एरिया एंड यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मेड फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, केटरिंग सर्विसेज एंड सो मच मोर, then you need to head down to Foodistan in Aubrey. And on top of that, they have an upscale dining experience inside the grocery store at a restaurant called The Vibe Restaurant. और आज का हमारा giveaway is also from The Vibe Restaurant. अगर आप ये giveaway जीतते हैं, then you can win one dish from The Vibe Restaurant by answering the questions absolutely correctly. Foodistan brings everything they see all in one place, plus they offer the lowest price match guarantee on groceries and free deliveries as long as you're within the 5 miles area. Not f as long as you're within the 5 miles area and your order is over $30. Exactly. And अगर आप फनेजा mention करते हैं, then you get an additional 10% discount on us, you guys, because we love our listeners. तो खेलें विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गो एंड प्ले आवर गिव अवे गेम। तो हमारा नंबर है 9722355555। जैसे गेम आपको पता ही है, इट्स द सेम एवरी टाइम। ऑल यू नीड टू डू इज आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली, एंड मैं, दिस इज आर साउंड्स लाइक वाला गेम। मैं गाना बजाऊंगी, गाना बड़ा इजी है, आपको मतलब फट से पता चल जाएगा ये बप्पी दा का गाना है। एब्सोल्युटली द एवरग्रीन, द मोस्ट अमेजिंग कंपोजर, बिकॉज उनके गाने सारे हिट होते हैं लेकिन काफी इंस्पायर्ड भी होते हैं। लेट्स नॉट गेट दैट, लेट अस एंजॉय द म्यूजिक दैट ही क्रिएट्स एनी वेज। तो ये गाना बप्पी दा का है, तो अगर आप उसको गेस कर देंगे बड़े अच्छे से, तो आपको ये प्राइज मिल जाएगा। तो मैं इंग्लिश वाला लगा रही हूँ पहले, एंड देन यू कैन फिगर इट आउट। ठीक है, चलो लेट्स गो, हियर वी गो। सुन लो पहले गाना।

0: Come on, you know this one. उषा उथप ने गाया ये गाना गाइस. There we go, we have our first caller here. Hi, can you hear me?
1: Hi, I can hear you.
0: Okay, great. पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me the correct answer.
1: My name is Rajnikant and this song
0: क्या
1: is.
0: क्या बात है, क्या legendary नाम है यार आपका, वाह.
1: No, really, it's my name and I am driving back with my kids back to home.
0: Okay, so tell me the correct song.
1: Julie, Julie, Julie.
0: नहीं, but that was a really good try. But Julie, Julie, Julie, I don't think वो बपीदा ने बनाया. I don't think so. नहीं.
1: Oh, sorry.
0: कोई बात नहीं. You, that was a really good try though. It was very close to that, but good try. I'm gonna take the next caller. Thanks for trying.
1: Thank you so much.
0: Bye. And we have our next caller. Hi, can you hear me?
2: Close to that.
3: Hello.
0: Hi, good can try. You hear me?
3: Yes, I can hear you.
0: Okay.
3: I was just on the radio. So.
0: रेडियो पीछे बैकग्राउंड में बंद कर दो क्योंकि वो ना क्लैश हो रही
3: है. हाँ, हाँ मैंने कर दिया.
0: पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर.
3: ओके, मेरा नाम रूपल है एंड द करेक्ट आंसर इज हरी ओम हरी.
0: अरे वाह, लेट्स गो. थोड़ा सा गा भी देता है, चलो साथ में, ठीक है. 1 2 3 4 हरी ओम हरी हरी ओम. नहीं, मेरे साथ नहीं गाओगे. हरी ओम.
3: मुझे बैड वर्जन पता है इसलिए तो मुझे बस इतना मैं इतना गा दूंगी, हरी ओम हरी.
0: वही वही याद है. कोई बात नहीं, स्पेशल प्राइज उसके लिए. मैं अकेले ही गा रही हूँ यहाँ पे. वो नहीं होता जब आप चलते चलते बात कर रहे हो, आपको लग रहा है आपका दोस्त आपके पीछे चल रहा है, पीछे मुड़ के देखते हो आप हवा से बातें कर रहे हो. बिल्कुल वैसी वाली वाइब हो गई. यार छोड़ दिया यार रूपल, तुमने मुझे आधे ऐसे अकेले अकेले गाते हुए.
3: अरे नहीं यार, मैं बोली ना, मुझे ना स्कूल वाला का याद आ गया, वो हरी ओम हरी.
0: भाई कोई बात नहीं, हम एज लॉन्ग एज हम हरी को याद कर रहे हैं, चाहे वो बपीदा की आवाज में या बपीदा की कॉम्पोजिशन में करे या स्कूल के प्रेयर्स में करे. भाई हरी हरी इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, राइट?
3: हरी इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, हरी फैन.
0: एग्जैक्टली. रूपल आप लाइन पे रहिए. यू कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द गिव अवे. मैं गाना लगाती हूँ, यही वाला गाना लगाती हूँ. And then I'll take your information, ठीक है?
3: चलो. Thank you,
0: guys. आप ये गाना enjoy करिए. मैं रूपल से थोड़ी चिटचैट और करके आती हूँ.

0: गाइज, अगर आपको ऐसे ही मजेदार गाने सुनने हैं एंड यू वांट टू लिसन टू देम लाइव, भाई रेडियो पे सुनना, यू नो, अपने सिस्टम पे सुनना एंड लाइव एक बैंड को इसको परफॉर्म करते हुए देखना, उसका अलग ही मजा है ना. एंड इफ यू वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस एट योर ओन पार्टीज एंड वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड एवरीथिंग, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू रीच आउट टू मी. आई हैव अ बैंड कॉल्ड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट. We are very easy to find. All you need to do is just go on www.dallasbollywood.com and you can find my information right over there. Reach out to me and then let's talk some fun and entertainment, because you know what we like to do? We like to have fun and we like to dance. That's what Desis, we know that, right? तो अगर आपके घर पे कोई ऐसी इवेंट हो रही है, संगीत हो रही है, ढोलकी हो रही है, and you just want a nice, entertaining, fun act. ये सब यू नो बैलेड्स नहीं गाएंगे हम लोग, गाएंगे डांस म्यूजिक. देन यू नीड टू रीच आउट टू माई बैंड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट एंड यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड आवर वेबसाइट. ओके, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो इनटू आवर नेक्स्ट सॉन्ग.
1: आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग.

0: Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभाल लेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
6: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
11: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

एंड गाइज इट इज 8:38 ऑन द क्लॉक. आप कैसे हैं? मैं तो बहुत सही हूँ. आज थर्सडे है, दैट मीन्स दो दिन बाद वीकेंड शुरू होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड यू गाइज आर स्टिल लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फन एजा रेडियो 104.9 FM. अगर आप भूल गए हैं तो मैं एक बार जरा और याद दिला दूं कि सोनू निगम इज कमिंग टू टेक्सस. गाइज सोनू निगम रेवोल्यूशन, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट of music live in concert. Sonu Nigam is going to be here on September 26th at 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets are available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. Okay, 855-360-SHOWS. Yes, this is Sonu Nigam Revolution live in concert, and as you know, Funasia is the exclusive मीडिया पार्टनर फॉर दिस इवेंट. सो मेक श्योर यू गो बाय योर टिकट्स, क्योंकि जितनी लेट खरीदोगे टिकट्स की प्राइसेस उतनी महंगी हो जाती है. ठीक है, अभी एक गाना सुनते हैं, देन उसके बाद हम सोनू निगम का बड़ा अच्छा सा कोई गाना सुनेंगे. हियर वी गो.

0: हे डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो।
1: मधम मधम तेरी गीली हंसी से

एंड गाइज वी आर बैक. अभी 8:49 बज रहे हैं क्लॉक में. आपका थर्सडे इवनिंग कैसा जा रहा है? मेरा तो बहुत सही जा रहा है. अभी पता है क्या हो रहा है? लाइक आई सेड लास्ट वीक, वी वर टॉकिंग अबाउट होल वीक अबाउट ट्विन फ्लेम्स. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट डिस्कशन, लेकिन 9 बजे के बाद. 9 बजे में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं. तब तक के लिए आप थोड़े बहुत प्यारे प्यारे गाने इन्जॉय करिए, एंड आई विल सी यू इन अबाउट 10 मिनट्स.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Floors clean.
2: Check.
1: Windows clean.
2: Check.
1: Kitchen clean.
2: Check.
1: Air ducts clean.
2: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
3: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: It's Hoko.
6: अरे बस भी करो यार.
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
7: हीरे मोती मैं चाहूं.
6: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
8: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
9: Alright guys, before we go into our discussion, ye gana Ashok ji ke liye, because he requested the song. So, enjoy.

दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू मिस्टर अनोनिमस. भाई उन्होंने कल भी कॉल किया था कि भाई मेरे लिए गाना बजा दो प्लीज, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बोलना चाहता. मैंने कहा ठीक है मिस्टर अनोनिमस, आपके लिए सिर्फ ये गाना. उनको थोड़ा पार्टी करने का मूड है, क्योंकि हम तो यहाँ पे थर्सडे से संडे की पार्टी हम थर्सडे शुरू कर देते हैं. वाई नॉट? पता है ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है पूरे हफ्ते जो होता है ना. ओके अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए हो देन यू प्रॉबली नो दिस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप गए हो तो पूरे हफ्ते ना सारी दुकानें सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर लाइक ग्रोसरी स्टोर्स. एवरीथिंग क्लोजेस एट 5 o'clock एक्सेप्ट थर्सडे. रात को वो 9 बजे तक खुला रहता है, एंड 9 बजे तक खुला रहना मतलब इट्स अ बिग डील. एंड देन फ्राइडे को थोड़ी देर और चलता है, संडे को फिर 4 बजे 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है. इमेजिन लिविंग दैट काइंड ऑफ अ लाइफ. आप 5 बजे घर से निकल रहे हो और रास्ते पे कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, सुनसान. वैसे मैं तो बहुत साल पहले गई थी ऑस्ट्रेलिया, तब ये फिनोमिनन था. अब तो वहाँ पे इतने इंडियंस हो गए हैं, आई एम श्योर सब कुछ 10 बजे तक वैसे ही खुला होगा. लेकिन कोई बात नहीं, आप ये गाना एंजॉय करिए मिस्टर अनोनिमस. आई होप यू गेट सम जिगी विगी टू दिस वीकेंड.

एंड वी आर बैक यू गाइस द फ्लेवर लाउंज. हां जी गाइस, अगर आपको खाना खाना है इस वीकेंड पे, मेक योर वीकेंड बफे प्लान्स एट द फ्लेवर लाउंज. यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर नाउ इन फ्रिस्को एंड दे आर सर्विंग एन ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेस, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल, फ्रेश फ्लेवर्स, एंड यू विल कीप गोइंग बैक टू मोर. ऑल दिस फॉर जस्ट 24.99 पर पर्सन. Enjoy the buffets on Saturday and Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. Guys, we are Indians. We love our buffet. That's why our shadis also have buffet. Nobody sits and eats. I don't know. I haven't attended a single shadi in America. But if you have, if that's the culture here for the desi weddings in America, I don't know. I've got to attend one. Lekin, bhai, Delhi mein toh saari shadi wo buffet wala culture hota tha. So, I absolutely love buffets. Take your family and friends and make your weekend delicious at the Flavor Lounge on Preston Road in Frisco, where good food and great memories are made. That is right.

गाइज, अगर आपको वो वाला वर्जन पसंद आया ना ख्वाबों के परिंदे का, देन यू नो वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू हायर माई बैंड, क्योंकि वो मेरी आवाज थी. विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं बोल रही हूँ वो मेरी आवाज थी सच्ची में. एंड अभी मैं आपको एक्चुअल वाला जो ओरिजिनल वर्जन है वो प्ले करती हूँ, जस्ट यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो लिसनिंग टू दैट रियली ब्यूटिफुल सॉन्ग. लेकिन गाइज, इफ यू वॉन्ट टू हियर मोर ऑफ माई सिंगिंग एंड मोर ऑफ माई वॉइस, यू नीड टू लुक अप माई बैंड डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट ऑन गूगल, ऑन द वेब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, वेर एवर, एंड जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड देन यू नो वी कैन कम एंड परफॉर्म फॉर यू गाइज एट योर इवेंट्स, वेडिंग रिसेप्शन, प्राइवेट इवेंट्स, प्राइवेट पार्टीज, जस्ट लेट मी नो एंड वील बी देयर. गाइज, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट फ्यू डेज, वी वर टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स. दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट ज्वाइंड आवर डिस्कशन टुडे, ट्विन फ्लेम्स आर बेसिकली, इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट वेयर दे से देर आर टू पीपल हु एम्बॉडी द सेम सोल, लेकिन जब री इनकारनेशन के टाइम या जो भी होती है उनकी सोल स्प्लिट हो जाती है एंड दे बिकम टू डिफरेंट पीपल, बट दे आर एक्चुअली द सेम पर्सन. एंड सम हाउ देर इज दिस कॉन्स्टेंट पुश एंड पुल, यू नो, इन साइंटिफिक टर्म्स यू कैन कॉल इट दी अवॉइडेंट एंशियस अटैचमेंट पैटर्न कॉन्स्टेंटली. एंड दी ओनली टाइम द ट्विन फ्लेम यूनियन हैपन्स वेन बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग ऑन देम सेल्व्स, दैट इज वेन दे एक्चुअली यूनाइट. आई थॉट दिस कॉन्सेप्ट वॉज सुपर सुपर ब्यूटिफुल एंड टूडे आई वॉन्ट टू शेयर, आई वॉन्ट टू कंक्लूड दैट डिस्कशन. ओके, लेट्स लुक एट द ब्यूटिफुल पॉसिबिलिटी. लेट्स नॉट मेक दिस की इतना सिनिकल भी नहीं बनाते, बिकॉज कई बार हम लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की होप में, ड्रीम्स में हम लोग रियालिटी को कई बार इग्नोर कर देते हैं. कल हमने वो बोला था कि कई बार यू नो सम पीपल गेट सो ऑब्सेस्ड विद द आइडिया दे एक्चुअली फॉरगेट रियालिटी एंड देन दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट ट्विन फ्लेम एंड फॉरगेटिंग अबाउट वॉट्स एक्चुअली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ दैम. बट देर इज समथिंग ब्यूटिफुल अबाउट दिस ट्विन फ्लेम आइडिया ऑल्सो, द आइडिया दैट सम पीपल एंटर आर लाइव्स and they awaken and ignite something within us. Maybe aap zyada creative ho gaye, maybe you become more retrospective, you know, you're asking questions about the way you are, the way you behave, maybe you start making music again if you're a musician, that is, maybe you finally leave that situation or that life or that job that wasn't right for you and maybe you were like feeling stuck over there. Maybe you confront an old wound. Maybe you actually start taking care of your health and taking care of yourself. Maybe you discover that you are discover that you are capable of loving much more deeply than you thought. And perhaps that is a gift, okay? Ki it's not necessarily ye person is mine, this is my twin flame, this is the one I have to be with. But this connection with this person has changed me so much that I have become a new person. Hai na? Something to think about.

0: गाइस, तनिष्क का फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है. यू कैन एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो अगर आप राखी गिफ्ट देने का सोच रहे हैं अपनी बहन को, शी विल नेवर फॉरगेट यू इफ यू टेक हर टू तनिष्क एंड बाय हर समथिंग. छोटा सा डायमंड वाला हीरे मोती सभी को चाहिए होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें, स्पेशली ऑल द गर्ल्स, वी लव इट. जितना भी हम बोलेंगे नहीं नहीं वी डोंट लाइक इट, वी डू लाइक इट. ओके, यू कैन डू दैट. और इफ यू आर प्लानिंग ऑन प्रपोजिंग टू योर गर्ल फ्रेंड, देन दिस इज द अपॉर्चुनिटी. डिस्काउंट मिलेगा यार, गो एंड एंजॉय. Or buy some beautiful diamond jewelry for your loved ones. Ya fir apni mummy ke liye bhi le lo yaar. Why not? Aur kab mauka milega aisa? See you in a little.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Yaar, modern Mangal Sutra dhoonte-dhoonte thak gayi hoon.
4: To carrot lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern Mangal Sutras.
3: Seriously? Kaisa collection hai?
4: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
5: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
10: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
11: अजी सुनते हो?
12: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
13: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया.
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया.
15: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-772. दैट्स 972-863-772.
13: विजिट www.sanadainc.com टुडे.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज
13: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
18: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

भाई पार्टी का मूड तो बन रहा है, लेकिन गाइस रात का वक्त हो गया है और अभी 9:30 बज चुके हैं, तो मे बी यू शैल यू नो इट्स टाइम टू वाइंड डाउन अ लिटिल बिट, है ना? ठीक है गाइस, तो जब हम ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कम्स इज हाउ डू यू नो वेदर यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट यू वांट टू कॉल अ ट्विन फ्लेम? तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देर इज नॉट अ डेफिनेटिव चेकलिस्ट, बट देर आर सम क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क योर सेल्फ कि हैज दिस कनेक्शन इंस्पायर्ड यू टू ग्रो? डज इट मेक यू अ मोर ऑनेस्ट पर्सन? डज इट रिवील पैटर्न्स दैट मे बी यू नीड टू हील? डज इट चैलेंज यू टू बिकम मोर इमोशनली सिक्योर? डज इट इनकरेज यू टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ? ओके, डज इट मेक यू लूज योर सेल्फ कि आप प्यार में इतना मग दोगे कि अपने आप को ही भूल गए? डज इट टॉलरेट बिहेवियर दैट यू नॉर्मली वुड नॉट एक्सपेक्ट? यू नो, डज इट मेक यू ऑब्सेस ओवर साइंस इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टू एक्शंस? तो ये दोनों तरफा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, देर आर सम पॉजिटिव, देर आर सम नेगेटिव. तो ये वाली क्वेश्चन अगर आपको आंसर मिल रहा है, अगर आप इन क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, देन मे बी यू मे हैव मेट योर ट्विन फ्लेम. डज इट मेक यू बिलीव दैट यू हैव टू सफर इन ऑर्डर टू प्रूव योर लव? दैट्स नॉट अ ट्विन फ्लेम थिंग, दैट्स लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग टू अ ह्यूज एक्सटेंट. बट हियर इज माई रूल फॉर टुनाइट. A spiritual connection should never become an excuse for emotional suffering. ठीक है? Always when you go into anything like a spiritual concept, think of it with, you know, like a little grain of salt. थोड़ा practically भी सोचना जरूरी है. You can call someone your twin flame. You can believe that the souls are connected. You can believe that there is a deeper purpose, but you still deserve a communication, respect, consistency, reciprocity. बाउंड्रीज एंड अ चॉइस. तो अगर आपको आपका पार्टनर ये सारी चीज़ें नहीं सेटिस्फाई कर रहा है एंड आप कन्फ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो देन मे बी यू नो यू शुड आस्क सम क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि इज द ट्विन फ्लेम रियली वर्थ इट, और यू नो एम आई जस्ट गोइंग इन फॉर द राइड.

बट गाइज यू नो ट्विन फ्लेम्स का ना एक बहुत ही अमेजिंग चीज होता है जो आई रियली लाइक आउट ऑफ डिस्पाइट ऑल ऑफ द यू नो द वूनेस एंड यू नो द लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एक चीज है ट्विन फ्लेम्स में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, वो ये है कि द थियोरी सेज दैट वंस यू मीट योर ट्विन फ्लेम देर इज नो स्पेस फॉर ईगो. तो ये जो हमारी बाउंड्रीज होती है ना, ये वॉल्स होते हैं, दिस इज माई स्टैंडर्ड, ये मैं इस पर नहीं करूँगा, उसने मुझे कॉल कैसे नहीं किया, यू नो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप हमेशा अपने आप से बातें करते रहते हैं कि ओ दिस पर्सन टेक्स्टेड मी, ओ मे बी आई शुड डबल टेक्स्ट देम, और लाइक मे बी आई शुड टेक्स्ट आफ्टर 30 मिनट्स, या फिर एक घंटे पूरे बाद मैं टेक्स्ट करूँगी, मैं ज़्यादा टेक्स्ट करूँगा या करूँगी, जो भी है, आई मीन यू कुड बी एनी वन, राइट? अगर वैसे करेंगे तो देन मे बी दे गेट द रॉन्ग आइडिया, ओ दे आर सो क्लिंगी, और दीज काइंड ऑफ थॉट्स जो हम लोग नॉर्मली डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स में लाते हैं, वी ऑल थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो when you meet your twin flame, it is said that the universe ensures that both the egos of your partners, both those egos are completely destroyed. Ego ki koi jagah hi nahi hai. Everything that is not aligned with divinity, with your true authentic self, everything that is not aligned with your true authentic self is pulled apart. Kyunki har hamesha jo hamari walls hoti hai na, jaise आपकी लिमिटेशंस की, आज मैं इतने टैक्स करूंगा, दे आर ऑल बिल्ड फ्रॉम फियर. यू नो द वे यू बिहेव, इट्स लाइक योर सेफ स्पेस, यू हैव क्रिएटेड दीज स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर हार्ट. देन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैपन्स जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो. लव फ्लड्स द एक्सपोज फाउंडेशंस. एंड दिस इज नॉट द सेंटिमेंटल काइंड ऑफ लव, दिस इज लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव ऑल टुगेदर. ठीक है, the kind that builds lasting monuments instead of like chota sa temporary structure, the kind you know something like I don't know Burj Khalifa, Eiffel Tower, Taj Mahal, aisi major structures jaisi, aisa wala pyar. These were not built on soft ground, they were built on everything that was ever unstable, wo sara hata ke solid ground pe bani hui hai. And union between twin flames kind of works the same way. Your purpose does not emerge from a fractured base. It is only emerges after the ground has been cleared. Puri tarah se aapki sari boundaries toot chuki hai. And there is no space for anything else except love. And then it rises, crystal clear, undeniable, like a diamond compressed through immense pressure. This is when you begin to shine your unconditional love in the world. This is when you individually as a person also begin to shine. Not before. Agar aapko ye process, agar aapko aisa feel ho raha hai ki it's pulling you apart, it's destroying you, aap broken nahi hai yaar. You are being prepared for something greater. You are being prepared for this great session. Theek hai? So you don't know what's coming in for you. Agar aapke saath bahut kuch gadbad ho raha hai, just hold on to it. There is something about to happen, okay?

गाइज, अगर आपको वो वाला वर्जन पसंद आया ना मैसेकर का, आई लाइक दैट वर्जन बेटर देन द मूवी वर्जन. यू नो दैट इज़ द लाइव वर्जन रिकॉर्डेड बाय शिल्पा राव एंड हर बैंड, एंड इट फीचर्स लाइक अ स्ट्रिंग सेक्शन एंड चेलोज एंड वायलिंस एंड बैकअप वोकलिस्ट. सच अ कूल वर्जन. इट्स लाइक कोक स्टूडियो मीट्स लाइक लाइव परफॉर्मर्स, बट इट्स इन शिल्पा राव रियल वॉइस एंड इट्स सच अ कूल सॉन्ग. और सबसे अमेजिंग पता क्या है, उसमें जो पियानिस्ट है ना, उसका नाम है अनुराग नायडू एंड ही इज एक्चुअली शिल्पाज ब्रदर, है ना. बोथ ब्रदर एंड सिस्टर दे आर, लेकिन अनुराग ही इज नॉट नोन सो मच इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एज लाइक अ म्यूजिक कंपोजर आई थिंक, बिकॉज अनुराग आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एक्चुअली एज अ जैज म्यूजिशियन. एंड फन फैक्ट, मैं जब 2 साल बॉम्बे में थी, व्हेन आई लिव्ड इन बॉम्बे, दिस वॉज अराउंड 10 ईयर्स बैक, बिटवीन 2015 to 2017 आई गेस, मतलब वैसे ही कुछ टाइम था. तो अनुराग एंड आई यूज टू प्ले टुगेदर फॉर अ फ्यू परफॉर्मेंसेज एंड एवरीथिंग. वी डिड अ कपल ऑफ शोज टुगेदर इन मुंबई. एंड वहाँ पे एक दिन मैं ना अनुराग के घर पहुँची रिहर्सल करने, तो और मुझे पता नहीं था शिल्पा एंड अनुराग वो ब्रदर सिस्टर. तो मैं ना शिल्पा को देख के मैंने कहा, अरे ये शिल्पा यहाँ, वॉट इज हैपनिंग. तो मुझे पता भी नहीं था मैं शिल्पा राव के घर में बैठी हुई हूँ, और शिल्पा राव कह रही है तुम चाय पियो कि मैं बनाती हूँ चाय. मैंने कहा श्योर, आई विल हैव सम चाय. बट दैट वॉज अ रियली फॉन्ड मेमोरी. तो गाइज, इट इज़ 9:49 ऑन द क्लॉक. मेरे जाने का ऑलमोस्ट टाइम आ रहा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अगले हफ्ते मैं फिर से आऊँगी विद अ न्यू थीम, अ न्यू टॉपिक. इट्स नॉट गोना बी ट्विन फ्लेम्स. आई होप यू मीट योर ट्विन फ्लेम और यू मीट सम काइंड ऑफ स्पेशल स्पिरिचुअल इंटरेक्शन दैट मेक्स यू थिंक अबाउट ट्विन फ्लेम्स एटलीस्ट, बिकॉज इट्स अ नाइस फीलिंग, यू नो, समथिंग टू थिंक अबाउट. लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. टेक्सस प्राइमरी केयर पिछले 13 साल से दे हैव प्राउडली केयर्ड फॉर योर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लनॉक्सी मेडिकल. एग्जैक्टली, टेक्सस प्राइमरी केयर जो थे, अब वो लनॉक्सी मेडिकल है. इट्स फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. दे ब्रिंग प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज ऑल अंडर वन रूफ. दे आर ओपन 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM to 8 PM. और कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत भी नहीं है आपको. तो इसीलिए जाओ एंड गेट योर हेल्थ टेकन केयर ऑफ. ठीक है, मैं आपसे अलविदा लेती हूँ. मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगी. मंडे में नहीं आ रही हूँ, इनफैक्ट मंडे मुझे थोड़ा सा काम है, लेकिन ट्यूसडे मैं यहीं पे रहूँगी, ब्रिंगिंग यू ए न्यू थीम फॉर नेक्स्ट वीक. ओके, अंटिल देन हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. गाइज, मुझे हैप्पी बर्थडे भी विश कर दो. 12 बजे मेरा जन्मदिन हो जाएगा एंड दिस इज सच अ सिग्निफिकेंट ईयर. देखो, लूनर इक्लिप्स के दिन मेरा जन्मदिन पड़ा है एंड आई होप, मतलब मुझे जो भी इंस्टाग्राम पे जितने भी पागल एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कितने सही है कितने गलत है, या वो नहीं पता, इंस्टाग्राम पे तो सब भी कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन सब कह रहे हैं कि अगले 10 साल वर्गो राशि के लिए बहुत सही होने वाला है. तो आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर होपिंग कि सब कुछ सही हो जाए. तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना आप सभी लोग. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग एंड ए वंडरफुल वीकेंड. Bye-bye.

तो गाइज, दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग, मैं जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहती हूँ. अगर आप लूनर एक्लिप्स का ध्यान दे रहे हैं तो 11 बजे के थोड़ी देर बाद, मतलब 11 बजे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपेरेंटली दे आर सेइंग 11 बजे. व्हाट ए अमेजिंग टाइमिंग. 11 बजे के आसपास लूनर एक्लिप्स होगा. ओके, द मून एक्चुअली स्टार्टेड टू डिम अराउंड 8:23 PM एंड इट इज अ ब्लड मून लूनर एक्लिप्स. मतलब मून काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ लिटिल बिट ऑरेंज टुडे. ठीक है, एज दिस हैपन्स द मून विल कंटिन्यूअसली ग्रो रेडर एंड रेडर थ्रू आउट द नाइट. 8 बजे के बाद शुरू हुआ था ये, और जैसे ही अर्थ शेडो पड़ेगी मून के ऊपर, मून लाल पे लाल पे लाल पे लाल ऐसे होते जाएगा, एंड बिफोर रिटर्निंग टू नॉर्मल अराउंड 2 बजे के करीब. बट ऑफकोर्स दिस इज़ वन डे इन ऑगस्ट, पर ये सारी चीज़ें बहुत और भी हो सकती हैं. लेकिन अगर आप देख रहे हैं और अगर आप जगे हुए हैं, सबसे पीक होगा एक्लिप्स का अराउंड 11 बजे. दैट इज द पीक एक्लिप्स. इजंट दैट अमेजिंग? वाओ, सो कूल. आई एम गोना वॉच आउट फॉर इट. आई होप यू गाइज ऑल्सो वॉच आउट फॉर इट. तब तक के लिए, जिमरान, इफ यू आर स्टिल लिसनिंग, आई एम सो सॉरी, मैं आपका गाना लगाना भूल गई. लेकिन अभी ये गाना, लास्ट सॉन्ग आपके लिए बिफोर आई डिप फॉर द नाइट.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
3: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
3: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
5: We need to talk.
6: अब क्या हुआ?
5: Nothing. It's not you.
6: Oh no.
5: It's the distance.
6: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
7: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया? हमसे कतई प्यार नहीं था, हुँ?

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के It's okay, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़की

0: The Heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता
2: हूँ. अच्छा सुना है? सुना
1: हाँ. वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी.
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
2: Hey everybody this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Panacea Radio

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a four-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
4: My name is Ritika Anand, sannyas name ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
3: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Here we go again. Attempt to commission on and better than our right.

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेश।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे बदमाश हमारी पत्नी बनकर.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: हेल्प मी,
1: काश
0: प्लीज हेल्प मी।
1: तू मेरी आँखें भर दे।
2: ऐसे कैसे गायब हो गए?
3: पता नहीं सर।
2: अरे रिकॉर्डिंग्स लाइन अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
1: हाँ।
0: प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: Oh, baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: Don't touch that dial. Keep listening.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डालस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: Hi, Dallas. This is Ranbir Kapoor, and you're listening to Fun Asia Radio.

mixing in the house.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: எங்களை பாரு ஊருக்குள்ள தாறு மாறு தாறு மாறு ஆ எடை சளி.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

Ha ha ha.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: उठता धुआं तो कैसे छुपाए।
1: सुधी है शहर ला गमंग गमंग वर ला अपने अपनी मुंडी कर दे यानि उठूंगा
0: अखियां करे जी हजूरी

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: रुको जरा, सबर करो।
5: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.senadainc.com today.
4: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this lovely Friday morning. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस रक्षाबंधन डे टुडे विद अ टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी रक्षाबंधन इन द वॉइस ऑफ श्रेया घोषाल.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
8: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
9: लैपटॉप में।
8: इन्वेस्टमेंट?
9: गूगल ड्राइव।
8: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
9: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
8: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
7: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
7: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
11: वी नीड टू टॉक।
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing, it's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
7: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
18: तुमसे मिलके दिल का है।
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
19: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन, और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: We love this track from the movie Ek Tha Tiger. Take us to the end of this first hour of our program. I do have another very busy hour coming up for you. Stay with me right here. I'll make sure you're entertained and informed at 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahu.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: How may I help you?
12: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
11: Fear not, we have the perfect solution.
13: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: जिंदगी एक रंगमंच है
15: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com. फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
13: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
16: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
13: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
16: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
15: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
17: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
18: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
19: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
20: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
21: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
19: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
22: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
0: Let's get started with this hour of the program. First and foremost, I'd like to wish everybody a very, very happy Raksha Bandhan today. And of course, we'll be talking more about Raksha Bandhan, and I will play the Raksha Bandhan tracks also for you. But first, let's get you some stories from the annals of history that happened on today's date, which is the 28th of August. Some stories that happened on today's date, and we'll try and get them to you in this segment only. The British Slavery Abolition Act received royal assent, ultimately freeing more than 800,000 enslaved Africans in the Caribbean and South Africa, as well as a small number in Canada, when it took effect the following year. Happened on today's date in 1833. And Richard Wagner's opera Lohengrin performed for the first time at Weimar in Germany. That is his prelude. As Charles Stuart Rose was born on today's date in 1877 in London, a British motorist, aviator and automobile manufacturer, one of the founders of the Rolls-Royce Limited Automobile Company, the first aviator to fly across the English Channel and back non-stop. Founder of Rolls-Royce, Charles Stuart Rose. The last great ruler of Zululand, captured by the British following his defeat in the British Zulu War, sent to exile because of his defiance of British rule in Southern Africa that led to Britain's invasion of Zululand, happened in the year 1879. And on a summer day, the 28th of August in 1899, a very mundane thing took place in New Bern, North Carolina. At the drugstore on the corner of Middle and Pollock Streets, patrons had their first taste of an old favorite under a new name. For several years, they'd been calling it Brad's Drink, after the drugstore's owner, Bradham. And that drink

0: American actor Chadwick Boseman, who had iconic roles
1: that I couldn't even imagine.
0: In movies like Black Panther in 2018. Died from colon cancer at the age of 43 on today's date in 2020. He's the one who said, "Purpose is an essential element of you. The struggles along the way are only meant to shape you for your purpose." Chadwick Boseman.
2: My son, it is your time.
3: Show me my respect and bow down.
0: Became a highly respected movie star with several iconic roles, notably Black Panther. Groundbreaking. Don't freeze.
4: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, because the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
7: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, because miracles happen in Mirage.
11: अरे यार, घर मिल गया।
12: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
13: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
12: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
13: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
14: Floors clean,
15: check.
14: Windows clean,
15: check.
14: Kitchen clean,
15: check.
14: Air ducts clean.
15: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
16: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
17: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
10: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
13: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

0: The power duo of Sonu Nigam and Vishal Dadlani came together for the first time in this Jaan Le Gayi. And this was a collaboration written by Shraddha Pandit with the music by Saleem Salaman. And I do hope that you enjoyed it. I will have world news coming up for you. We do that normally in the half hour segment every hour that I'm on the airwaves here with you. We will have a guest on our airwaves at 9:45. Right now I have some messages from our sponsors and advertisers as we encourage you to please contact them and use their services and products. They keep the radio going and I'm sure you will love what they have for you. Here they are.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
2: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
2: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
4: Immigration is a serious concern for our community and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
6: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
5: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
6: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
5: ये क्या होता है
6: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन Available.
9: Hello Texas Parivar, क्या आपको पता है there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call कीजिए Kamna को at 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है NMLS 96641
10: ये तारा वो तारा हर तारा
11: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
12: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
12: कहाँ
14: फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी केटरिंग सर्विसेज प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
15: फूडिस्तान इन ऑबरी मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट
16: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
17: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं
18: डील कहाँ
17: सिंपल पास्या पे इंट्रोड्यूसिंग पास्या डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ ओपन पास्या सी व्हाट्स अराउंड यू फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन
18: डाउनलोड पास्या दैट्स PAASYA टुडे बिकॉज डील्स दूर नहीं पास है
19: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं हमारी यादें हैं और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो लिमिटेड सीट्स फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल टिकट्स एट eventbrite.com मोर इन्फो 214-869-2668 प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Floors clean.
2: Check.
1: Windows clean.
2: Check.
1: Kitchen clean.
2: Check.
1: Air ducts clean.
2: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
3: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
4: Hey, tumne kabhi insurance liya?
5: Liya.
4: Kabhi policy samajh bhi aaya?
5: Nahi aaya.
4: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

You are listening to Gupshup Gali with me too. Hello, namaskar, and thank you very much for tuning in. And before we move forward, ghadi to mila lijiye. It is almost 15 minutes past 10 by the studio clock. और आज की तारीख है 28th of August, और इसके बाद सीधे हम आखिरी दिन पे मिलने वाले हैं अगस्त के, एंड दैट इज़ ऑन मंडे, लेडीज एंड जेंटलमैन. सो विल मेक इट वर्थ वाइल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज है फ्राइडे. तो आज के दिन का ना एक सिंपल सा एक रूल होता है मेरे शो पे, और वो रूल ये है कि आज के दिन ना गमगीन गाने सुनना चाहते हैं ना सुनवाना चाहते हैं. नाउ दैट बीइंग सेड, लेट्स हॉप ऑन टू अनदर ब्यूटिफुल रोमांटिक सॉन्ग right here on Gupshup Gali with me too.

0: बहुत सारी मन मर्जियां हम करते रहते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर हेल्थ से जुड़ी बात हो ना तो मर्जी आपके बॉडी की होनी चाहिए. आपकी बॉडी क्या मांगती है आपसे उसका ख्याल रखना चाहिए, यानी कि डू व्हाट इज एसेंशियल फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. और इसीलिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और या तो आपके पास आउट ऑफ नेटवर्क है यू नो पैशन हेल्थ आपके लिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप सीधे इनको अप्रोच करो, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम. यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. दैट यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ, विच इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीजेज, मेडिकेशन मैनेजमेंट, यू नो टेली हेल्थ व्हेन एप्रोप्रिएट एंड केयर coordination. 20% savings on eligible self-pay labs as well, imaging and diagnostic services. Do remember passionhealthphysicians.com is their website where you can order.
1: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
2: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
6: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
6: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक.
6: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
2: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
7: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: जीनी, हुकम मेरी आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
9: मिराज लाउंज, चलिए मेरी आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
9: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
8: और एंटरटेनमेंट,
9: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
9: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
12: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
0: I hope you got all the details about this concert, which is in a month's time, less than a month's time. So hopefully आपने अपने tickets खरीद लिए हैं. Ticketmaster.com पे जाकर कि अगर नहीं खरीदा हो तो फटाफट call करो at 855-360-SHOWS, ladies and gentlemen. और ticketmaster.com पे तो actually सारी information है. The denomination that you are seeking, आप फटाफट कर दो, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जाना तो है ही भाई. अगर जाना है तो भाई अच्छे seats भी पाना है, इसीलिए फटाफट जाओ आप इस website पे and book your tickets for Revolution Sonu Nigam Live. और ये September 26 Saturday को एक बार फिर दोहरा दूं कि भाई 8:30 PM the gates will open at the Credit Union of Texas Events Center for all of you to enjoy Sonu Nigam once again right here in Dallas. Unka ekna naya sa gana aaya hai kuch 7 din pehle. I'm going to play that for all of you. And inke saath hai Selena Sharma. A meeting of two generations, two voices, lekin message ek hai. Sune. This is Gapshap Gali with Me Too.

दिस इज सोनू निगम्स न्यू सॉन्ग जो हफ्ते भर पहले ही रिलीज हुआ है. दो जनरेशंस, दो आवाजें, लेकिन मैसेज वो एक लेकर आए, जो कि वॉज अबाउट फाइंडिंग लाइट, लव एंड स्टिलनेस इन अ वर्ल्ड दैट नेवर स्टॉप्स मूविंग. ऐसे ही कुछ बहुत ही खूबसूरत एक गाना विच इज मेंट फॉर ऑल दोज जिनमें वो स्पिरिट है, वो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन है. और ये गाना ना शांताबाई पवार के लिए बनाया गया था, वेरी स्पेशली ए सॉन्ग दैट वॉज डेडिकेटेड टू हर स्ट्रगल्स एंड हर रिजिलियंस इन लाइफ. शांताबाई पवार वो हैं जो कि वॉरियर आजी के नाम से जानी जाती हैं, और ये ना ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स लाठी काठी को परफॉर्म करती हैं स्ट्रीट्स पे. एंड शी इज 88 आई बिलीव, एंड शी इज स्टिल you know that resilient person on the streets of Pune jo ki kitne logon ko inspire karti hai. To unhi ke liye ek gana jo ki banaya gaya to inspire all such people and who are going through certain something in their lives. Pakheru is gaane ka title. This is Gapshap Gali with me too.

एंड दैट इज अ सॉन्ग दैट वॉज डेडिकेटेड टू वॉरियर आजी शांता पवार. इनकी ना आप अगर पढ़ोगे आप इनकी लाइफ स्टोरी, बहुत इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी है. शी इज 90+ ना, आई वॉज थिंकिंग शी इज 88, नो बट शी इज 90+. और ये जो है वायरल हो गई थी ऑन सोशल मीडिया, वेयर शी वॉज सीन परफॉर्मिंग द लाठी काठी रूटीन विथ सच एजिलिटी दैट कुड पुट यू नो ऑल ऑफ अस टू शेम रियली. और इसी के लिए वो काफ़ी पॉपुलर हुई लोगों में, जिस तरह से वो लोगों को इंस्पायर करती आई हैं, इसीलिए ये जो गाना जो कुछ साल पहले उनके लिए डेडिकेट किया गया था. जस्ट अ लिटिल FYI अबाउट सॉन्ग्स एंड इंटेंशंस दैट आर सो ब्यूटिफुल दैट यू कैन नॉट जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट, राइट. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. आप लोगों के लिए वेदर अपडेट कमिंग अप इन ए लिटिल बिट. उसके पहले एक और अच्छा सा गाना लगाना चाहती हूँ, और उसके पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर यू नो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज की बात की जाए ना, तो ऐसे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं. लेट्स पुट इट दैट वे. मोटिवेशन इज सच अ बिग फैक्टर दैट आर सिबलिंग्स हैव ब्रॉट इन आर लाइव्स. तो आज के दिन फिर एक बार हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फेस्टिवल. और मैं शबनम जी का शो सुनते हुए आ रही थी और बिल्कुल सही कहा कि ऐसी और कोई कंट्री नहीं होगी या ऐसा और कोई त्यौहार नहीं होगा जो भाई और बहन या सिबलिंग्स का रिश्ता कहने इस खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट करता है. तो वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज डेफिनेटली द लास्ट डे फॉर ऑल ऑफ यू. फाइनेंशियल रेडियो एंड चौक टॉक कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरैंड, दे वांट टू हियर योर स्टोरीज. प्लीज गो फॉरवर्ड एंड गिव देम दैट मैसेज ऑन व्हाट्सएप. एक मिनट का वॉइस नोट आप दीजिए. जिंदगी बताई है यार आपने उनके साथ, और उनके साथ इतने सारे किस्से कहानियां हैं, उनमें से बस एक छोटा सा एक कोई किस्सा आप शेयर कीजिए. एनी फीलिंग दैट यू हैव फॉर योर सिबलिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर, 1 मिनट वॉइस नोट, दैट इज वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम यू. इन an unforgettable memory that you would like to share with all of us at 2148377147. That's the number. Aur iske saath judi hain prizes, dining experiences, entertainment, resort stays. If you are one of the participants in the contest and if you win, definitely there is a possibility of you winning the grand prize as well. Sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durand. How amazing that will be. कहाँ मौका मिलता है यार. हमारी आजकल की जिंदगियाँ अलग अलग डायरेक्शन में चली गई हैं, तो ऐसे मौका बहुत मुश्किल से मिलता है कि आप क्लब करें एक वेकेशन सिर्फ अपने भाई या बहन के नाम, है ना. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड लव टू डू विद देम. तो चौक टाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरैंड, लेट्स गिव देम अ बिग शाउट आउट बिकॉज दे वॉन्ट दोज अनफॉरगेटेबल मेमोरीज टू बी ऑलवेज यू नो रिटन इन गोल्डन वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू हियर फोर्थ. क्योंकि सच में कभी कभी वो ना अपने सिबलिंग्स के साथ वो ये एक अलग सा वेकेशन लेना चाहिए. ये मौका चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरैंड दे आर गिविंग टू यू अलॉन्ग विथ फन एशिया रेडियो. यू मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. ये तो बात ठीक है. भाई बहनों के साथ आपका सर नहीं फिर जाए कि भाई जाओ और ऐसे मस्ती में डूब जाओ कि यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाओ. तो दिस इज वॉट वी ऑल्सो वॉन्ट टू एड. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली देर एंड येस सेंड योर वॉइस नोट ऑन वॉट एट 2148377147. कुछ हटके गानों की जो कोशिश रहती है लाने की इस सेगमेंट में, लेट मी कंटिन्यू राइट हियर. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: म्यूजिक ना अगर अच्छा लगे तो उसकी कोई भाषा नहीं होती है, तो होपफुली यू एंजॉयड इट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये गाना मैंने पूरा नहीं सुना था. आई डिडंट नो देयर इज अ बंगाली पार्ट टू इट. आई हर्ड जस्ट अ लिटिल बिट एंड आई थॉट आई विल डिस्कवर इट विथ यू, अलॉन्ग विथ यू. एंड आई होप यू एंजॉयड इट दो. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. एवरीथिंग दैट यू लाइक, द साउंड, द रिदम, एवरीथिंग दैट वी वॉन्ट टू ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू. एंड an amalgamation of soft and upbeat and everything that is light in terms of talking and conversations that we bring for you in Gupshup Gali.
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
6: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
11: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
12: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years older to game.
14: Tracks that put you on the right track.

एंड दैट्स द मूवी बंदर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका आप ये गाना सुन रहे थे. अनुराग कश्यप की फिल्म थी एंड नो वंडर द लिरिक्स वर सो यू नो सॉर्ट ऑफ व्हाट शुड आई से, एक टुडेज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पिंजरा, द केज that Anurag Kashyap wanted to show in this song. And it was the titular track of this movie, jo ki ek thriller hai, aur Z5 pe aaj se stream karna shuru karne wali hai. Bobby Deol, Sania Malhotra aur Saba Azad were the key people in this movie. Aur saath mein Sapna Pabbi, let's not forget her also, she's an amazing actor as well. Aur ek shocking aur disturbing story hai ye Bandar, aur aisa keh rahe hain ki bhai bahut hi badhiya acting hai, heart-wrenching performances by Bobby Deol and others that you will see in this movie. Bobby Deol second innings in his career, jo ye shuru hua hai unke is career mein, agli jo film aayegi that is going to be this high stakes espionage thriller series for Prime Video, jo ki kab release hone wali hai wo mujhe sahi se nahi pata. I believe it should be this year, but then we'll keep you posted on that. Isme hai ki ek secret agent jo hai, jinhe presume kar liya jata ki 7 saal pehle wo mar chuke hain, उन्हें फॉल्सली एक ब्रांड दे दिया जाता है ऑफ अ मोल, और वो चीज वो आते हैं रिटर्न करते हैं आफ्टर 7 years टू यू नो क्लीन हिज नेम. एंड दैट इज बॉबी देओल्स कैरेक्टर इन 3 कौवे, जो कि जल्द ही आएगी आप लोगों के लिए ऑन Amazon Prime, that's what I believe, but I'll keep you posted on that. बाकी रही बात बंदर की, ये Z5 पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है. प्राइम की अगर मैं बात करूँ तो बबीता सिंह रिपोर्टिंग इज दैट क्राइम ड्रामा दैट आई स्पोक अबाउट जस्ट अ फ्यू डेज बैक, और इसमें निमिषा सजायन इज द पर्सन हु इज डूइंग द की रोल, दैट रूकी कॉप दैट शी इज प्लेइंग इन दिस वन, बेबी जिनका नाम होगा इसमें, बबीता सिंह उर्फ बेबी, एंड शी इज suspended but gets pulled into a murder case when her childhood friend is found dead, forcing her to uncover long buried secrets. तो ये है वो फिल्म 3 कौवा, जो आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पे स्ट्रीमिंग टुडे, स्टार्टिंग टुडे. और अल्फा जो मूवी आई थी आलिया भट्ट और शर्वरी की अलॉन्ग विद बॉबी देओल ऑफ कोर्स एंड अनिल कपूर, ये फिल्म आप लोगों के लिए अब आज से नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. सो दीज आर द फ्यू OTT वॉचेस फॉर ऑल ऑफ यू दैट आई थॉट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसी फिल्म नहीं है जो इस सेगमेंट में मैं कवर कर सकती हूँ. कोई खास ऐसी दिखी नहीं मुझे जो आज के दिन रिलीज हुई थी, तो मैंने सोचा आज क्या नया ताज़ा आ रहा है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, उसी के बारे में बात कर लूँ. एंड टॉकिंग अबाउट बॉबी देओल, हाउ कैन वी फॉरगेट हिज जमाल कुडू, की जब वो फिल्म रिलीज हुई थी 2 साल पहले, राइट, ये हर शो में बजता एक बार जरूर था. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

एंड दैट्स बॉबी देओल इन एनिमल लेडीज एंड जेंटलमैन. ये गाना कितना पॉपुलर हुआ था, कितना सुनते थे यार आप लोग, तो अब रिक्वेस्ट ही नहीं करते इस गाने की. इतनी जल्दी हमारे दिमाग से एक गाना निकल भी जाता है, जिस तरह से वो चढ़ता है बुखार उसी तरह से उतर भी जाता है किसी ऐसे गाने का. लेकिन कुछ कुछ गाने होते हैं जिनकी ना मतलब ओवर द ईयर्स उनकी पॉपुलैरिटी बस बढ़ती ही चली जाती है और हमेशा यादगार रहता है. इफ़ यू टॉक अबाउट दैट एरा, कुछ ऐसे गाने हैं जो आपके दिमाग में इमीडिएटली आ जाते हैं. एक ये गाना लगाना चाहती हूं और इस गाने में जो हीरो हैं, क्या आपको याद है कि वो कौन है, क्या नाम है उनका? लेट्स गेट यू द सॉन्ग एंड लेट्स सी इफ यू कैन रिमेंबर कि पूजा भट्ट के साथ इस गाने में किसने डांस किया था. हु वॉज दैट हीरो इफ यू कैन टेल मी. मैं तालियां बजाऊंगी यार, हर बात गिव अवे के लिए तो नहीं हो सकता ना.

लिसन, दीपक तिजोरी का ना एक और गाना याद आ रहा है, लेकिन उसके पहले आशीष के लिए एज प्रॉमिस्ड तालियां तो भाई बजानी ही पड़ेंगी, क्योंकि यार सही पहचाना आपने, दीपक तिजोरी इन दिस सॉन्ग विथ पूजा भट्ट, और उनका मेरे ख्याल से गेस्ट अपीयरेंस था इन दिल है कि मानता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन दैट, बट देन यस आई वांट टू आल्सो टेल यू कि दीपक तिजोरी को इतने इतने प्यार से मैं क्यों याद कर रही हूँ. ये वो दोस्त होते थे हमारे हीरो के जो कि आप उस उन जैसा दोस्त बनना चाहते थे, एंड ही वॉज दैट ब्यूटिफुल फ्रेंड इन द बॉलीवुड फिल्म दैट वॉज सुपर हिट. आप वो खिलाड़ी कह लो जिसमें उन्होंने बॉनी का रोल किया था, या आशिकी कह लो जिसमें उन्होंने बालू का रोल किया था, या फिर गोटिया. गोटिया किसे याद है बाय द वे, टेल मी दैट, क्योंकि इस फिल्म का नाम है सड़क, और इस फिल्म में एक बहुत बढ़िया सा गाना है दीपक तिजोरी का विद सनी देओल. डिड आई जस्ट से सनी देओल? मुझे तो मतलब अंदर कर दे जान चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स इट इज संजय दत्त दैट आई वांटेड टू से, सनी देओल मुंह से निकल आया, बट यस संजय दत्त एंड दीपक तिजोरी इन दिस वन. गोटिया का किरदार जो था बहुत क्यूट सा उनका रोल था, एंड ऑफ कोर्स कभी हाँ कभी ना में क्रिस का किरदार था यार. इट इज हिज बर्थडे टुडे और उन्हीं को सेलिब्रेट करना चाहते थे, देयरफॉर दिस नेक्स्ट ट्रैक हैप्पी वाला बर्थडे टू दीपक तिजोरी.

एंड इट इज द सॉन्ग विच वॉज फीचर्ड ऑन अक्षय खन्ना. इसमें कोई शक नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो गाना था जब रिलीज हुआ धुरंधर का, तो इतना पॉपुलर हुआ, स्पेशली आफ्टर पीपल वॉच द फिल्म. उसके बाद कुछ और ही ज्यादा लेवल पे ये वायरल हुआ था, एंड उसके बाद यूं आया और यूं हवा भी हो गया. हम अक्सर प्ले किया करते थे जब धुरंधर रिलीज हुई थी, और धुरंधर के गाने भी एक्चुअली. एंड एज अ टाइम पासिस, ऐसे सारे जो गाने बड़े पॉपुलर होते और बहुत सुनते हैं, एक फिर वक्त आता है कि धीरे धीरे वो कम होने लगता है और कम से फिर गायब होने लगता है. रोजीना की रिक्वेस्ट पे आई प्लेड दैट ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज अ हैबिट वी ऑल हैव. कुछ खास ही गाने ऐसे होते हैं जो कि रह जाते हैं ओवर द डेकेड्स एंड यू नो द टर्न ऑफ द सेंचुरी, दे हैव स्टेड विद अस. कुछ वैसे गाने भी प्ले करूंगी. अगर आपके जहन में कोई आए तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवाएं, क्योंकि मेरे भी अभी दिमाग में ऐसा कोई गाना इमीडिएटली ऐसे आ नहीं रहा है, बट आई एम श्योर आई विल बी एबल टू फाइंड फ्यू. And help me here, all right? 972-235-5555 number in the studio here. And Akshay Khanna ki agar main baat karu na, so ye jo film thi unka jo wo ek deadpan persona tha as Rehman Dakait, wo itna popular hua ki uska natija mere khayal se ye ho gaya hai abhi ki I don't know it is the expectation of the directors ya fir Akshay Khanna us style ko itne popular hote dekh kar he is repeating it. It's the walk, it's the serious demeanor that he has, जो एक repetitive लग रहा है उनका, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने उनकी फिल्म इक्का देखी with Sunny Deol, you know, और मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल वो रहमान डकैत वाला ही एक वो जो एक जो feel है उनके character में, body language, all of that, it feels repetitive. I don't know what exactly is the point here. I don't know ये उनके तरफ से है कि director के तरफ से. Nonetheless, you know, अक्षय खन्ना जो 90s में भी हम उन्हें काफी पसंद करते थे, उनके कुछ फिल्मों में से ये गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ था. थैंक्स टू माधुरी दीक्षित एज वेल फॉर दिस वन.

ये उनके तरफ से है कि डायरेक्टर के तरफ से. नन द लेस, यू नो, अक्षय खन्ना जो 90s में भी हम उन्हें काफी पसंद करते थे, उनके कुछ फिल्मों में से ये गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ था, थैंक्स टू माधुरी दीक्षित एज वेल फॉर दिस वन. दिस इज गपशप गली विथ मीठू. ये है जिंदगी अनप्लग्ड सेगमेंट जिसमें कुछ बात करेंगे यार, जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ निकालेंगे टॉपिक.

भाई हार्ट तो उन्होंने ब्रेक किया था, माधुरी दीक्षित ने 1999 में हजारों के दिल तोड़े थे जब उन्होंने शादी कर ली थी नेने साहब के साथ। दिस इज गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग, लेट्स नॉट ब्रेक आर फ्यूचर लेडीज एंड जेंटलमैन। इसीलिए चाहते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स जो यूएस में है, आप उनके साथ जुड़ें। agfintax.com इज द वेबसाइट यू नीड टू रिमेंबर। रिड्यूस योर टैक्स लीकेज, बिल्ड क्लीन फाइनेंशियल्स and control your cash with Mr. Anil Grandhi and his team. Aap unse baatcheet karein and see how they can help you. This is a place jahan par aap walk in kar sakte hain. If you need to find out something, anything, they are located in Frisco, ladies and gentlemen. Just trust them. They are efficient and they are committed to your success. Chahe wo bookkeeping ho, payroll accounting ho, bank and credit card reconciliations ki baare mein baat ho, ya proactive tax planning, tax compliance, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज की बात हो, यहां पर आपके जो फाइनेंसेस हैं पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करते हैं। बेसिकली आप फ्यूचर रेडी हो जाते हो विथ देम, बिकॉज इनके पास जो इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं आपके बिल्कुल नीड बेस्ड हैं। तो इसीलिए आप जरूर इनके साथ कनेक्ट करें। 4699429888, दैट्स द नंबर टू कॉल। agfintax.com इज the website to go. I'm going to go to this very sweet melodious request from this very sweet couple jinka naam hai Sohail and Mariam. Ye jab bhi call karte hain na, ye ek saath call karte hain yaar, kuch marriage goals jo ye set karte hain logon ke liye, janna chahungi yaar kabhi hai ki saath mein ye aise kaise, matlab har baar jab bhi call karte hain they always call together, to kuch to yaar secret of marriage janna padega inka. कुछ अनुपम खेर ने भी शेयर किया, वो मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। हाँ, दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड वील देन गो टू आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन जिंदगी अनप्लग्ड।

व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज़। और हम कुछ गानों की ऐसी बात कर रहे थे ना कि भाई ऐसे गाने जो कि जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स लोग सुनते चले जाते हैं फॉर द सॉन्ग दैट दे आर। वो ऐसे गाने नहीं होते, ये कुछ ऐसे गाने नहीं होते हैं जो कि यू नो यूं बुखार की तरह चढ़ा और उतर गया, यू नो। सो दीज आर दो सॉन्ग्स, द क्लासिक्स दैट वी कॉल। वंस अगेन यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विथ मी टू। कुछ हैप्पी मैरिज की बात हो रही थी यार। हमारे एक कपल लिसनर हैं, जब भी कॉल करते हैं साथ कॉल करते हैं, और उन्हीं को याद करते हुए अनुपम खेर का एक रील मुझे याद आ गया, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई उनके फादर उनके मदर को बहुत प्यार करते थे, एंड लाइकवाइज मदर भी बहुत ज़्यादा उनके फादर को। एंड उन्होंने अपने फादर से एक बार पूछा था कि वॉट इज़ द सीक्रेट सॉस टू इट, एंड ही एक्चुअली मेंशन कि भाई उनका ये था कहना कि भाई क्या होता है ना कि जब आप जिस इंसान से शादी करते हो वो वक्त के साथ बदलता रहता है, कि यानी कि आप खुद पे अगर लेते हैं कि 10 साल पहले जो आप थे 10 साल बाद आप वो नहीं रहते हो, ये जो चेंज है ना वो चेंज के साथ चेंज होते रहना और एक्सेप्ट करते रहना अपने पार्टनर को बहुत ज़रूरी होता है। कि आप ये पलट के ना कहो कि यार 5 साल पहले तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी, या 5 साल पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, वो सारी चीज़ें नहीं। आप वक्त के साथ अपने पार्टनर के लिए बदलते रहते हो, बी इट ए वाइफ फॉर हस्बैंड या हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, यू नो म्यूचुअल ये होता है एक अरेंजमेंट, या कह लें ये बॉन्डिंग कि आप एक दूसरे के लिए बदलते चले जाते हो वक्त के साथ, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनके उनके हिसाब से आप एकोमोडेट होते जाते हो। एंड दैट इज़ द ट्रू रेसिपी फॉर ए हैप्पी मैरिज अकॉर्डिंग टू अनुपम खेर्स डैड। यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू। और ये 10 ईयर्स का जो मैंने हिसाब, या 5 साल का आप कह लें, जो ये मेंटल मैथ मैंने किया ना, कि ये जो एक होता है कि यू नो 10 साल पहले फॉर एग्जाम्पल वेयर वर यू, वॉट वर यू डूइंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हु वर यू, ये सारे जो सवाल है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और इसी पे बेस्ड मेरा आज का जिंदगी अनप्लग्ड सेगमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ऑल ऑफ यू। क्या है ना कि हम सब बड़े यू नो एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना चाहते हैं, राइट? वी ग्रो एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो विद टाइम। द पर्सन यू वर 10 ईयर्स अगो और उसके 10 साल पहले, समझ लें, टोटली डिफरेंट रहे होंगे, करेक्ट? वक्त और एनवायरनमेंट के साथ हम सब में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। समटाइम्स वी अपग्रेड स्मूथली, लाइक स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर कह लें, एंड समटाइम्स वेल वी जस्ट बफर। बट थिंक अबाउट इट, अगर दुनिया में सबसे परमानेंट चीज़ चेंज ही है, तो वाई लेट इट हैपन ऑन ऑटो पायलट? वाई नॉट टेक द स्टीयरिंग व्हील इन योर ओन हैंड्स? We spend hours and hours and hours planning for our future, you know, financial planning हो गई, career goal हो गया, even weekend plans के बारे में भी बड़ी सारी तैयारियाँ चलती है। पर सोच के देखें, कभी ठंडे दिमाग से सोचा है आपने कि भाई 10 साल बाद मैं किस तरह का इंसान बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ? इस बारे में कभी आपने विचार किया है? क्योंकि ये तो भाई बिल्कुल हमारे कंट्रोल में चीज़ है, और इसी के बारे में आज थोड़ी सी जिंदगी अनप्लग्ड में चर्चा की जाए। क्या कहते हैं आप? डू यू थिंक इट्स ए टॉपिक दैट यू वुड बी कीन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट? दिस इज गपशप गली विथ मी टू। ब्रेक के उस पार भी इसी टॉपिक पे हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे।

0: अपने महबूब या अपने सनम के साथ होको जरूर जाएं लेडीज एंड जेंटलमैन। और आज जो रक्षाबंधन है, या अपने भाई या बहन को भी लेके जाएं यार साथ में। होको इज दैट वन प्लेस दैट इंडिया हैज मोस्ट लव्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया, जो अब आपके लिए फ्रिस्को में है। यानी कि वही सारी चीजें जो वहां पे आप इंडिया में रहकर इंजॉय करते थे, आपको यहां मिलेगा। वो चना पूरी से लेकर सैंडविचेस तक, और करी से लेकर उनके फेमस होको कुल कोको कुल तक लेकर आप जरूर वहाँ उन तक पहुँचे और इन्जॉय करें होको का स्पेशल खाना। उनका फुल मेन्यू आपको hoko.us पे मिल जाएगा। ज़रूर जाएं और बिल्कुल अच्छे से हंगरी जाएं वहाँ पे, ताकि आप वहाँ के सारे डिशेस जो हैं इन्जॉय कर सको, सारे नहीं तो थोड़े डिशेस इन्जॉय कर सको।
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम, ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
15: चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
16: Tracks that put you on the right track.

दिस इज वन ऑफ दोज वेरी स्पेशल सॉन्ग्स बाय यो यो हनी सिंह, जिसमें हमने कोई रैपिंग नहीं सुनी और एक अच्छा खासा गाना जो उन्होंने गाया, लिखा और साथ में कॉम्पोज भी किया. इट वॉज बंजारे. लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू गपशप गली विद मीठू. घड़ी मिला लीजिए, इट इज एग्जैक्टली 38 मिनट्स पास्ट 11. और फिलहाल जो बाहर का मौसम है उसके बारे में भी बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, लेकिन अंदर के मौसम के बारे में जानना चाहती हूँ. नो सीरियसली, क्या है ना कि हम अपना वार्डरोब अपडेट कर लेते हैं, अपने कार्स अपग्रेड कर लेते हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन इसका क्या जो आप देख नहीं पा रहे हो वो ये है कि मैं दिमाग की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ यार, माइंडसेट की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले जो अगले कुछ क्या कहूँ साल और ये डेकेड जो है ना, उसके लिए आपकी अपना आपने क्या पिक्चर बनाया है अपने दिमाग में वो जानना चाहती हूँ. क्योंकि आपने पिछले 10 सालों में जो किया, आपका जो एनवायरमेंट था, उसका डायरेक्ट नतीजा आज आपके सामने आईने में खड़ा है. लुक एट योर सेल्फ टूडे. नो सीरियसली, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप देखो और ये समझो, द वे यू हैंडल स्ट्रेस, द वे यू लाफ, द वे यू आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, यू नो, टू एज सिंपल एज हाउ यू रिएक्ट इन ट्रैफिक, लेट्स से, या फिर कोई भी डिसएग्रीमेंट पे या झगड़े में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, इट्स ऑल ए प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डेकेड कि आपने अपने आप को कैसे ग्रूम किया है. तो आगे चलते यानी कि अगले 10 साल के लिए आप अपने एक नहीं एक अपग्रेड करना चाहोगे, अपडेट करना चाहोगे अपने आप को. मतलब इट इज़ सो स्ट्रेंज कि हम दुनिया जहाँ की चीज़ों का को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम सोचते तक नहीं कि यार आज से 10 साल के बाद हाउ डू आई वॉन्ट टू बी, यू नो. सो लेट्स आस्क आवर सेल्फ कि 10 साल से अब से 10 साल में डू आई वॉन्ट टू बी द सेम पर्सन, या मैं चाहूँगी कि भैया मेरे में थोड़ा सा और पेशेंस आए, कि मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ी सी और एडवेंचरस बनूँ, कि मैं चाहूँगी कि मैं एक सिंपल से टेक्स्ट को लेकर ओवर थिंक ना करूँ. जनरली ओवर थिंक ही ना करूँ यार, डिज़ाइन दैट फ्यूचर यू इंटेंशनली इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग टू सी हाउ यू एक्सीडेंटली बिकम. मेक सेंस? आज जिंदगी अनप्लग में यही बातचीत हमारी कंटिन्यूड रहने वाली है. Stay here on Financial Radio 104.9 FM.

यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ की प्लानिंग करनी हो, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना हो, या अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए अगर प्लानिंग चाहिए आपको, तो माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. तो क्या है ना कि माई टाइम एक्विटी के जो हमारे CPA सुधीर पाए हैं, उनके साथ और उनकी पूरी टीम के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो. और चाहे आप अपने लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, एक सॉलिड स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अगर आपको बनानी है थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, तो नंबर है 4697021272. आज ही कॉल करें, कनेक्ट विद हिम एंड हिज टीम. mytimeequity.com इज द वेबसाइट. हमारे स्टूडियो का नंबर 9722355555. जिंदगी अनप्लग सेगमेंट में हम ना ये एक अपना एक जो है एक पोर्ट्रेट अच्छा सा एक क्रिएट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट वी वांट टू बी 10 years हेंस. क्योंकि बिलीव इट और नॉट, पिछले 10 साल में जो आपने काम किए हैं वही आप आज अपने आप को अपने आईने में देख सकते हो. दैट इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से बात करके कि भाई क्या है ना कि जो हम अपना जो फ्यूचर प्लान करते हैं उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना कि आपने किस तरह से अपने चीज़ों को संभाला है लाइफ में, वो आप यानी कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा एक रोल यू नो आपके लिए प्ले करता है, मानते हैं कि नहीं. तो क्या है ना, टू प्लान फॉर द फ्यूचर यानी कि हाउ यू वॉन्ट टू बी, यू नीड ए सॉलिड रियलिटी चेक ऑफ द प्रेजेंट. तो सबसे बड़ा सवाल आपसे जो है वो ये है, आर यू वन ऑफ दोज रेयर पीपल हु कैन एक्चुअली सी देयर ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्लियरली. इट साउंड्स वेरी सिंपल. हाँ, मतलब सच्ची में अभी मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि आप अपने 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव मुझे बताओ, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या आता है, ये मुझे आप कॉल करके बताओ, या तो फिर आप खुद अपने एक नोट उस चीज़ का बनाओ. क्योंकि क्या है ना कि वो एक्यूरेट अपने आप को जज करना इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बिलीव इट और नॉट. हाउ वेल डू यू रियली नो योर सेल्फ? क्या आपने कभी कोशिश की है अपने आप को समझने की विदाउट एनी फिल्टर्स? रिकग्नाइजिंग योर फ्लॉज डजेंट मेक यू वीक. सबसे पहले तो ये बता दूं, इट मेक्स यू सेल्फ अवेयर. नोइंग वेदर यू लैक इन सर्टन समथिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू मेक श्योर कि आपके अगले 10 साल ना सुपर सॉलिड बीते. तो येस, टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है यार. एंड देर इज़ अ मैसिव ट्रैप हियर that we need to avoid. जब हम खुद को analyze करते हैं ना, हम अक्सर extremes चले जाते हैं. You know, either we put on these rose-tinted glasses of a superiority complex कि भाई मैं मस्त हूँ यार, मैं तो best हूँ यार, मेरे में कोई गलती नहीं है, मुझ में तो कोई fault ही नहीं हो सकती. और वी गो दी अदर साइड कि यार मुझ में ये कमी है, मुझ में वो गलती है, मुझे ये सुधारना है, वो सुधारना. मतलब या तो इन्फीरियॉरिटी या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में कई लोग सफ़र करते हैं उस चीज़ से. बोथ ऑफ दीज आर ए टोटल स्कैम. यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ बिना किसी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के या किसी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के. वो फिल्टर जिस दिन आपको ढूंढ के मिल जाए अपने लिए ना, संभाल के रखिए, अगले 10 साल रोशन है फिर.

जितने भी बिजनेस ओनर्स जो सुन रहे हैं हमें, हम सबको बताना चाहते हैं कि भाई आपके पास ना स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन है, और अगर आपके आपको चाहिए हो इसके बारे में और जानकारी तो गेट इन टच विद तारा कमर्शियल एनर्जी या 8444282808 इज दैट नंबर. taraenergy.com इनकी वेबसाइट है जहां पर आपको ना सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि इनकी कंपेटिटिव रेट्स के बारे में पता चल जाएगा, रिलायबल सर्विस के हैं ये आपको पता चल जाएगा, कस्टमाइज एनर्जी प्लान है इनके पास ये आपको पता चल जाएगा, और बाकी जो कुछ ना पता चले या आपको जानना है एक्स्ट्रा कुछ तो फिर 8444282808 इज दैट नंबर. नाम याद रहना चाहिए, तारा कमर्शियल एनर्जी. वंस अगेन थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विथ मीठू. और हमारी इस गली में ना, मतलब जिंदगी अनप्लग सेगमेंट जो 11 टू 12 के बीच होता है, हम जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें करते हैं. तो क्या है ना कि कुछ इस बारे में बातचीत चल रही है हमारी अभी कि 10 साल के बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, क्योंकि हमारी इतनी सारी प्लानिंग चलती है यार. ये एनर्जी प्लान ही ले लीजिए या फाइनेंशियल प्लान ले लीजिए, कितनी सारी हम प्लानिंग करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन खुद के बारे में प्लानिंग कभी नहीं हमारी चलती कि यार यू नो वॉट कि मैं आज मेरे में ना ये मुझे खामियां दिख रही हैं या ये पॉजिटिव दिख रहा है, इस पॉजिटिव को मैं और अच्छा बनाऊंगा या बनाऊंगी और इस नेगेटिव को मैं अपनी ज़िंदगी से हटाऊंगा या हटाऊंगी. यू नो क्या होता है ना, अक्सर जब हम अपने अपना बिना फिल्टर के हम लोग जब अपने आप को एनालाइज करते हैं तो लगता है यार सब सही है कि मैं ये सोचती हूँ और ये इसीलिए सही है. इस तरह का एक जो एक दिमाग में आपके ऑटोमेटिक एक फिल्टर रहता है, दिस इज सच अ डेंजरस थिंग. लीविंग असाइड ऑल द सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एंड द इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एक नॉर्मल इंसान के का भी ना अपने आप को ठीक से इवेल्युएट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इट्स अबाउट यू नो स्ट्रिपिंग अवे द ईगो एंड brutally and beautifully honest with yourself. Do you know your actual strengths and actual weaknesses? That's my question to you again. Maybe you're great at making people feel heard, but your weakness is that you hold on to grudges. Kya pata hai na, is tarah ki cheeze jo ki aapne shayad apne bare mein kabhi realize hi nahi ki. Be real with yourself when you evaluate yourself. To uske baad क्या करना है आपको मैं बताती हूँ. हियर इज अ फन लिटिल एक्सरसाइज फॉर यू टू डू इन द कमिंग डेज, वेन एवर यू वॉन्ट टू रियली डू, करिएगा जरूर. ये आपको बड़ा लगेगा कि क्लीशेड सा एक स्टेटमेंट है, लेकिन करिएगा जरूर, बहुत अच्छा फील करेंगे एंड कहीं तो एक फोकस भी सही रहेगा. टेक अ पीस ऑफ पेपर या तो फिर अपने नोट्स ऐप को खोल के बैठें फोन पे एंड राइट डाउन 3 थिंग्स यू एब्सोल्यूटली लव अबाउट द पर्सन यू आर टूडे. ओके, और उसके ठीक नीचे राइट डाउन 3 ट्रेट्स यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली एट एट मेकिंग पीपल फील हर्ड, बट योर वीकनेस इज दैट यू होल्ड ऑन टू ग्रजेस. क्या पता है ना, इस तरह की चीज़ें जो कि आपने शायद अपने बारे में कभी रियलाइज ही नहीं की. बी रियल विथ योर सेल्फ वेन यू इवेल्युएट योर सेल्फ. तो उसके बाद क्या करना है आपको मैं बताती हूँ. हियर इज अ फन लिटिल एक्सरसाइज फॉर यू टू डू इन द कमिंग डेज, वेन एवर यू वॉन्ट टू रियली डू, करिएगा जरूर. ये आपको बड़ा लगेगा कि क्लीशेड सा एक स्टेटमेंट है, लेकिन करिएगा जरूर, बहुत अच्छा फील करेंगे एंड कहीं तो एक फोकस भी सही रहेगा. टेक अ पीस ऑफ पेपर या तो फिर अपने नोट्स ऐप को खोल के बैठें फोन पे एंड राइट डाउन 3 थिंग्स यू एब्सोल्यूटली लव अबाउट द पर्सन यू आर टूडे. ओके, और उसके ठीक नीचे राइट डाउन 3 ट्रेट्स यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली अपग्रेड इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स. कोई जजमेंट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, ए प्योर अनएडल्ट्रेटेड सेल्फ डिस्कवरी का ये सबसे अच्छा एक नुस्खा जो आप आजमा सकते हैं. यू नो इमेजिन मीटिंग द 2036 वर्जन ऑफ योर सेल्फ. Make sure that person is somebody you'd actually want to hang out with. जिसके साथ आप चाय वाय पीना पसंद करोगे. यानी कि be that person that you want to be, that you would like to hang out with, right? Change तो वैसे भी आने ही वाली है मेरे दोस्त. मतलब सबसे important बात क्या है पता है आपको, कि change is the most permanent thing in our life. So, bas let's design a revolution according to what we want. Think about it, you know, work on it, and until next time, I will say keep growing. 2036 ko phir baat hogi iske baare mein. Kya kehte hain? You are listening to Gapshap Gali with me too.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Yaar, modern manga sutra dhoonte dhoonte thak gayi hoon.
7: To Carrot Lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern manga sutras.
6: Seriously? Kaisa collection hai?
7: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
8: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
9: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
14: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
15: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. ज्वाइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
19: तुमसे मिलके दिल का है.
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
20: Tracks that put you on the right track.

कीर्ति's रिक्वेस्ट राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन. रिक्वेस्ट बड़ी जल्दी में आया था, जी लिया और मैं उनसे बात जी भर के कर रही थी और इस चक्कर में भूल गई कि कौन सा जी लिया सुनना था, बिकॉज देर आर सो मेनी सॉन्ग्स विद द सेम टाइटल जी लिया का. मैंने ये वर्जन तो आपको सुनवा दिया, वर्जन इन द सेंस कि मोमिना मुस्तसान की आवाज़ में तो सुनवा दिया, एक और जी लिया ताकि हम हिट कर सकें द राइट सॉन्ग. होपफुली ईदर वन ऑफ देम इज द सॉन्ग चॉइस दैट शी वॉन्टेड टू लिसन टू. कीर्ति थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. आप लोगों के लिए सवाल है, फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड जीतने का वक्त है, तो उठा लीजिए अपने फोन और फटाफट कॉल कीजिए, क्योंकि आपको सीधे सबसे पहले तो ना वेबसाइट जाना पड़ेगा, तो फोन करने के पहले वेबसाइट पहुंचे और वेबसाइट पहुंच कर मुझे बताएं कि फन पिज्जा किचन के कितने साल हुए हैं. व्हेन डिड फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को स्टार्ट? अगर आप मुझे बता सकें तो आपको मिल सकता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम देयर फ्रिस्को लोकेशन इटसेल्फ. और ये सवाल इसीलिए क्योंकि भाई फन पिज्जा किचन जो कि एक प्रॉमिस के साथ शुरुआत हुई थी इसकी क्लोज टू 10 ईयर्स बैक. हाँ, मतलब दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर क्लूज देयर कि अगर आप नहीं कर सकते हैं वेबसाइट ओपन, तो ये आपके लिए एक क्लू रहा और तुरंत मुझे कॉल करें. एंड ऑल्सो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि एक महीने के अंदर आपने नहीं जीता हो तो ही आप जीत सकते हैं ये $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. तो ये जो एक प्रॉमिस के साथ आए थे कि वो मतलब हर स्लाइस में उनकी खासियत ये होगी कि आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आए, इतना बढ़िया खाना विथ केयर एंड क्रिएटिविटी दैट दे मेक. और क्रिएटिविटी का तो क्या ही कहना, दैट देसी ट्विस्ट दैट दे हैव.

0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Ladies and gentlemen, hopefully Kirti ka gana hum play kar paaye. You are tuned into Gupshup Gali with Meetho. Aur is Gupshup mein giveaway ki baat hui. Aur giveaway ko ab seriously zarur lein, kyunki kuch logon ne guess kiya, kyunki unke liye shayad website pe jana mushkil hai. तो फिर से एक बार गेस करने का मौका देती हूँ और जो भी मुझे पहला सही जवाब देंगे ना उनको मिलने वाला है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. सिंपल सा सवाल कि भाई फन पिज्जा किचन कब शुरू हुआ था इन फ्रिस्को. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सिंपल सा सवाल. दे आर क्लोज टू सेलिब्रेटिंग 10 years. आप बताएं कि भाई किस साल हुआ था. द बिगेस्ट क्लू, इफ यू डोंट हैव योर यू नो फोन अराउंड यू टू क्विकली ओपन. फोन तो होगा ही वैसे आपके पास, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप नहीं जा सकते हो फोन पे, तो ये क्लू आपके लिए था कि भाई दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट 10 years वेरी सून. सो व्हाट ईयर डिड दे बिगिन और स्टार्ट इन फ्रिस्को? व्हाट डू यू थिंक? यू आर लाइव ऑन एयर, वेरी क्विकली टेल मी द ईयर.
1: 2016?
0: नहीं, गलत जवाब. 10 साल तो फिर मैं बोलती कि भाई होने. अच्छा ठीक है, मैंने. वेल थैंक यू सो मच. व्हाट्स योर नेम?
1: जय.
0: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. तो 2016 तो कतई नहीं है, ये आपको जय ने हेल्प कर दिया है. तो जरूर कॉल करके मुझे बताएं कि विच ईयर डू यू थिंक दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट देयर 10 years. या बता दें कि कब स्टार्ट हुआ था फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. यू आर लाइव ऑन एयर, वेरी क्विकली टेल मी द ईयर व्हेन दे स्टार्टेड.
1: या इट्स 2017.
0: No, it's not 2017. बहुत करीब है ये बोल सकती हूँ.

0: आपका नाम सर?
1: संग्राम।
0: संग्राम। चलो, ये जो बैटल चल रहा है ना हमारे, कि अगर आप बता सको कि फन पिज्जा किचन फ्रिस्को कब शुरू हुआ, तो भाई क्या ही कहूँ, $10 गिफ्ट कार्ड सीधे सीधे आपके नाम कर दिया जाएगा। फ्रॉम द फ्रिस्को लोकेशन, विच ईयर डिड दे स्टार्ट?

0: शेर खुल गए का तो नहीं पता भाई, रास्ता लेकिन खुल गया है फॉर मोनिका. लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर गजिलियन रॉन्ग आंसर्स, आई डू हैव द राइट आंसर एंड लेट्स गेट हर ऑन द एयरवेव्स. नाम बताइए हमारी जनता को एंड ईयर ऑफ यू नो स्टार्ट फॉर फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को, व्हाट इज दैट ईयर?
1: इट वॉज इन 2018.
0: यू गॉट इट राइट. और आपने वेबसाइट भी नहीं देखा?
1: नहीं, वेबसाइट में we've been like fan of Fun Pizza Kitchen, right? And we live nearby of this location.
0: अरे क्या बात है, फिर तो आप अगर फैन हो तो मुझे $10 देने में एक्स्ट्रा खुशी हो रही है आपको. एंड ड्रू ट्राई आउट देयर मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइन अप, राइट? आई एम गोइंग टू टेक ऑल योर डिटेल्स मोनिका ऑफ एयर एंड गिव यू दैट $10 गिफ्ट कार्ड कमिंग अप फॉर यू राइट नाउ. क्योंकि ये गाना सुनिए तो फिर वीकेंड का एक रंग चढ़ जाएगा आपके ऊपर.

जितने भी एप्पल फैंस हैं वो झूम झूम के गाने के लिए तैयार हो सकते हैं. वेल, दिस इज अ सेगमेंट ताजा एंड न्यू द फ्रेश ड्रॉप. हम आपके लिए जो न्यूज लेकर आए हैं, इट इज टू हैपन ऑन सितंबर 19th. एप्पल ने अपना नेक्स्ट मेजर इवेंट विच दे आर टैगिंग एज सरप्राइज एंड शाइन, इट इज गोइंग टू बी ऑन सितंबर 9, 2026. और ये अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से कल ही आया है. कुपरटिनो में होने वाला है. कुपरटिनो के एप्पल पार्क कैंपस में होगा ये. एंड द हाईली एंटिसिपेटेड कीनोट विल स्ट्रीम लाइव ग्लोबली एट लेट्स सी नून ऑन एप्पल्स वेबसाइट, यूट्यूब एंड द एप्पल टीवी ऐप. इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थॉट आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू. और इस साल के इवेंट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन, जो कि आप इस इवेंट पे पहली बार देखने वाले हो, जिसे मोस्ट लाइकली, ऐसा र्यूमर्स बता रहे हैं हमें कि आईफोन अल्ट्रा के नाम से यू नो दैट इज द नेम दैट इट विल हैव. एंड दिस कंप्लीटली न्यू बुक स्टाइल डिवाइस इज एक्सपेक्टेड टू फीचर क्रीज फ्री डुअल डिस्प्लेज एंड रिलाई ऑन साइड माउंटेन टच आईडी इंस्टेड ऑफ फेस आईडी एंड कुड कैरी ए मैसिव प्राइस टैग ऑफ ओवर $2,000. और ये शेयर कर लिया हमने, फिर बताइए, कहिएगा नहीं कि भाई ये ताज़ा खबर हम तक कैसे नहीं पहुंची. पहुंच गई है, क्योंकि आप सुन रहे हैं फन पिज्ज़ा किचन, फनीशियर रेडियो 104.9 FM. देखिए, मैं पिज्ज़ा पे अटक गई हूँ. फन पिज्ज़ा किचन का फन जो पिज्ज़ा होता है वो इतना यम होता है कि दिमाग वहीं पे है. आफ्टर ऑल लंच टाइम भी तो है यार, दिमाग को क्यों दोष दूँ यहाँ पर, है ना. और इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टैंडर्ड आईफोन 18 का रिलीज जो है वो पुश कर दिया गया है 2027 तक. दैट इज गोइंग टू बी. एंड सबसे खास बात ये है कि ये एप्पल के पहले मेजर का वो पहला मेजर इवेंट होगा अंडर द कंप्लीट न्यू लीडरशिप ऑफ CEO जॉन टर्नस, जो सितंबर 1st को टिम कुक से ऑफिशियली चार्ज लेने वाले हैं. दैट इज फॉर ऑल ऑफ यू टू नो. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. This is Gupshup Gali. और इस Gupshup Gali के आखिरी सेगमेंट में वो याद दिलाना चाहती हूँ, which is very important for all of you to know, कि अगर आप एक्सीडेंट में पड़े हैं या कुछ स्लिप एंड फॉल केस के कारण परेशान हैं, समथिंग दैट यू थिंक कि आपको अगली पार्टी से ना कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन कौन ये इस झिकझिक में पड़े और इसीलिए आपने वो छोड़ दिया किस्सा, वेल ज़रूर उठाएं और अटर्नी उमर ख्वाजा के पास जाएं. दैट लीगल बैटल दैट दे विल फाइट फॉर यू वाइल यू फोकस ऑन हीलिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो ये जो कॉम्पनसेशन जिसके आप एंटाइटलमेंट है आपके पास, आप ज़रूर याद रखें कि कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको अटर्नी ख्वाजा उमर ख्वाजा या उनकी टीम को, अनलेस यू विन योर केस. बहुत बड़ा प्रॉमिस होता है यार किसी भी किसी के लिए भी ये देना, एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस दे ब्रिंग फॉर यू ऑन द टेबल. 4693005046 इज द नंबर टू कॉल, एंड attorneyoma.com इज द वेबसाइट फॉर योर फ्री कंसल्टेशन. डू रिमेंबर दैट. एंड ट्रैफिक अपडेट फ्रॉम देम कमिंग अप फॉर यू राइट नाउ. US 80 at FM 460 Clements Drive eastbound पे एक major collision हुआ है that you might want to find out about if you are on that route. एक और collision जो कि I-20 पे at spur 408 eastbound where right shoulder and rightmost lane are closed, and then there is a major collision on I-45 at Pleasant Run Road southbound जहाँ पे सारे lanes और left and right shoulders भी पूरी तरह से बंद है. सो यू वुड वॉन्ट टू टेक एन ऑल्टरनेट राउट देयर, एंड दैट्स योर ट्रैफिक अपडेट फ्रॉम अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम.
1: रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया,

0: अब तो सीधे मंडे को ही मिलेंगे यार, आखिरी दिन ऑफ अगस्त. वी विल बी हियर फॉर यू टू हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन हियर ऑन गपशप गली. दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
5: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
6: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया.
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया.
6: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-772. That's 972-863-772.
8: Visit www.senadainc.com today.
9: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
8: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं.
9: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
8: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
9: इंडिया तक.
8: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
5: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
10: बेटा 95% आए?
11: हाँ मम्मी.
10: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
12: मेरा?
10: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
2: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
15: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
14: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
5: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
15: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
5: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
15: Matlab crispy golden dosa?
5: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
15: Wow, great food, full variety and everyone's happy. Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand. Come hungry, leave happy. Together.

0: झुमका 12:38 by the studio clock, यानी कि लंच का प्लान बन चुका है, काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और वीकेंड का फीवर ऑफिशियली चढ़ गया है. ऑफिस में स्क्रीन पर एक्सेल तो खुला है बट दिमाग ना वीकेंड का बॉलीवुड ट्रेलर चला रहा है. कहीं डिनर प्लान्स बन रहे हैं, कहीं ओटीटी का रिमोट रिजर्व्ड पे किया जा रहा है और कहीं बॉस के सामने बस दिखने एक्टिंग वाली और वो भी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग चल रही है कि हाँ भाई मेरा काम चल रहा है. गुड आफ्टरनून DFW, दिस इज रमिता एंड वेलकम टू फिल्मी फ्राइडे. आज बॉलीवुड का फ्रेश तड़का भी होगा, नॉस्टैल्जिया की मिठास भी होगी. यू नीड टू गेस मूवीज जो कि हम हर हफ्ते खेलते हैं, दैट्स अ फेमस गेम ऑफ आवर्स, बाय द क्लूज एंड डायलॉग बाजी भी चलेगी और हमारे कॉल लाइंस बिल्कुल खुले हैं आपके फिल्मी वाइब्स के लिए. दिस इज अगेन द फिल्मी फ्राइडे जहां हर फ्राइडे हम बात करते हैं नए रिलीज की, चाहे वो थिएटर्स में हो या फिर आपका वीकेंड वॉच लिस्ट रिकमेंडेशन मिलता है मेरे साथ. तो कॉफी उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए और फ्राइडे आफ्टरनून की असली पिक्चर शुरू कीजिए मेरे साथ, बिकॉज दिस इज फनीशिया रेडियो एंड दिस इज फिल्मी फ्राइडे विथ मी रमिता.
1: आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is a Filmy Friday with me, Ramita, today. And ladies and gentlemen, slow motion mein chaliye, sunglasses adjust kijiye, background mein explosion imagine kijiye, kyunki toxic aa gayi hai. And I'm going to talk about the recent released Toxic, the movie by Yash, Kiara Advani, Nayanthara and Tara Sutaria being casted in It. तो इस वीक की रिलीज, जैसे कि मैंने कहा, 26 तारीख को रिलीज हुई है टॉक्सिक. और फिल्म देखकर मुझे एक बात समझ आ गई कि यश अगर चाय पीने भी जाएगा ना, तो कप टेबल तक पहुंचने में 3 स्लो मोशन शॉट्स, 4 कैमरा एंगल्स और 1 थंडरस बैकग्राउंड इसका स्कोर लगेगा. फिल्म का स्केल इतना ग्रैंड है, सिनेमाटोग्राफी इतनी स्टनिंग है, एक्शन स्टाइलिश है, कॉस्ट्यूम्स भी ग्लैमरस है, एंड यश का स्वैग, भाई स्वैग इतना है कि स्क्रीन प्ले को बैठने की जगह ही नहीं मिली. स्टोरी 1947 के गोवा में सेट है. गैंगस्टर्स है, रोमांस है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी है और एक सर्कस भी है. मतलब मेकर्स ने एंटरटेनमेंट की पूरी ग्रॉसरी लिस्ट खरीद ली, बट रेसिपी बनाना, वो शायद रेसिपी बनाना ही भूल गए हैं. फर्स्ट हाफ में हम वेट करते हैं कि कहानी अब चलेगी, अब तो पक्का चलेगी. लेकिन कहानी भी हमारे DFW की ट्रैफिक की तरह है ना, फंस चुकी है, मूवमेंट बहुत ही कम है. परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यश स्क्रीन पर फुल पार में है. कियारा आडवाणी भी जेन्युइनली इज वेरी इम्प्रेसिव, जो ट्रेलर में हमें साफ नजर आया. नयनतारा इज टेरिफिक टू मी, एंड देर इज अ सरप्राइज पैकेज ऑफ तारा सुतारिया इन दिस मूवी. एंड द टेक्निकल टीम, उनके बारे में जितना कम बोले वही अच्छा है, बिकॉज विजुअली इतनी प्रीमियम है ना ये मूवी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी. बट स्टोरी और स्क्रीन प्ले अगर देख लेते भाई लोग तो अच्छा होता. लेकिन क्लाइमैक्स का ट्विस्ट ऐसा बाउंसर है, समझने के लिए रीप्ले नहीं, डायरेक्टर का पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहिए. यानी उन्हें एक वीडियो बनाना चाहिए इंस्टाग्राम में, जो हमें समझाए कि आखिर मूवी है क्या. तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये जा रहा है कि टॉक्सिक एक एक्सट्रीमली हैंडसम इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जैसे फोटोज फेब्यूलस है, एटीट्यूड किलर है, बट बायो में लिखने के लिए सब्सटेंस थोड़ा सा कम है. तो आप अगर यश के फैन हो, KGF से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो, या जनरली एक ब्लॉकबस्टर फील वाली मूवी देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो इट फॉर अ वॉच दिस वीकेंड.

You're listening to 104.9 FM, Phanisha Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita. And yes, tabahi macha rahi hai Yash ki toxic in the box office, but for all the wrong reasons. Toh aap agar Yash ke fan ho aur mass action movie goer bhi ho, theater mein jaake aap ye cheeze enjoy karte hai, toh definitely this is a must go to watch for you this week, and that is my recommendation. But agar story aur emotional depth ढूंढने जा रहे हो ना, तो भाई लोग फ्लैशलाइट साथ ले जाइए, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. फिलहाल तबाही की बात हो रही है तो और एक तबाही मचने वाली है इन DFW. वो कब और कहां मैं बता रही हूं, इतना जल्दी क्या है. सितंबर 26 को मचने वाली है बिकॉज द वन एंड ओनली सोनू निगम विल बी लाइव हियर इन डैलस. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन ऑन सैटरडे 6th of September, 8:30 p.m. onwards at the Credit Union of Texas Event Center, which is located in Allen. और भाई आपके जो फेवरेट गाने हैं, with that iconic voice, everything is going to come alive. Tickets available है Ticketmaster पे. More for more information, you can call 855-360-SHOWS. So Revolution, Sonu Nigam live, and the Phanisha Network are the exclusive media partner for this unforgettable night of music.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
4: Dad, property papers kahan hai?
5: Laptop mein.
4: Investment?
5: Google Drive.
4: Insurance? Passwords?
5: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
4: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
6: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
6: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
8: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं ही।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
18: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
17: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
18: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
17: ये क्या होता?
18: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
19: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
20: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
21: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
22: उमर ख्वाजा।
23: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
24: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वही तो प्रॉब्लम है। आज की रात आप करना क्या चाहते हो, करने क्या वाले हो, क्या होगा? आई मीन वीकेंड आते ही, फ्राइडे नाइट, आई मीन फ्राइडे इवनिंग आते ही, आफ्टरनून आते ही, आपके दिमाग में यही बस चलता रहता है कि यार बस ये वीकेंड मिस ना हो जाए। आई डोंट मिस द बस, आई डोंट मिस द फन। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो। मैं हूँ रमिता एंड दिस इज फिल्मी फ्राइडे, जहाँ पे फ्राइडेज को आप क्या करने वाले हो, वीकेंड्स को आपका प्लान क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मूवीज, OTT रिलीजेस, उन सारे रिकमेंडेशंस का पिटारा सिर्फ मेरे पास है। तो मूवीज की तो बात मैंने कर ली, अबाउट यशज टॉक्सिक दैट हैज ऑलरेडी रिलीज, OTT रिलीज के बारे में भी आई विल बी टॉकिंग टू यू। बट सबसे पहले आज चूंकि फ्राइडे है और अगर आपको कुछ हद तक मन है कि अपने जो ज्वेलरी कलेक्शन है उसको थोड़ा सा आप पैम्पर करने वाले हो, अपने आप को पैम्पर करने वाले हो, कलेक्शन को थोड़ा सा चढ़ावा देने वाले हो, बढ़ावा देने वाले हो, देन टुडे इज द डे, क्योंकि कल तक ही एक ऑफर वैलिड है एंड दैट इज एट द तनिष्क, वेयर यू कैन एंजॉय द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। यू कैन एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, यानी कि आपके पुराने सोने विच आर अबव 18 कैरेट। तो सेलिब्रेट कीजिए इस सीजन को विथ टाइमलेस स्पार्कल ओनली एट तनिष्क। टर्म्स एंड कंडीशंस तो अप्लाइड हर ऑफर में होता है, तो इसमें भी है। तो बाकी जानकारी के लिए यू कैन विजिट द तनिष्क विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को। और जो OTT रिकमेंडेशन की बात मैं करने वाली हूँ इस शानदार गाने के बाद।

14 minutes past 1 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Phanisha Radio. मैं हूं रुमिता and this is a फिल्मी फ्राइडे, जहां पे टाइम हो चुका है कि मैं आपका जो वीकेंड है ना, जरा सा थोड़ा सा फिल्मी वे में सवार लूं, क्योंकि फ्राइडे नाइट का परमानेंट फैमिली क्वेश्चन यही होता है कि आज क्या देखे भाई। एक को कॉमेडी चाहिए, दूसरे को थ्रिलर चाहिए, तीसरे को रोमांस चाहिए और 45 मिनट्स गुजर जाते हैं, पर फिर भी आपका जो स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन, वो होम पेज में ही अटक जाता है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट मेरे लिए ना डिनर वॉच या लंच वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हाथ में प्लेट लेके वेट तो करती हूँ, बट जब तक मुझे अपने पसंदीदा टीवी पे कुछ जो कुछ भी, इधर वो मूवी हो या सीरीज हो, पसंदीदा कुछ नहीं मिलता है ना, प्लेट वहीं के वहीं लेफ्ट हैंड में होती है और रिमोट राइट हैंड में सर्चिंग फॉर इट। तो अगर इस वीकेंड आपको कुछ OTT रिकमेंडेशन चाहिए, देन सुन लो यार, ध्यान से सुन लो। अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर देखने का मूड है तो बंदर स्ट्रीम कर चुकी है। वो कहाँ कर चुकी है वो मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि भाई लोग ने पैसे नहीं दिए, बट बॉबी देओल एक फेडिंग टेलीविजन स्टार के रोल में है, जिसकी

लाइफ एक सीरियस अक्यूजेशन के बाद कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है. डायरेक्टेड बाय अनुराग काश्यप, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स. तो आपको अगर उनकी स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, सिनेमा मेकिंग पसंद है, उनकी डायरेक्शन पसंद है, तो क्लियरली दिस इज नॉट योर लाइट बैकग्राउंड वॉच, इट नीड्स योर अटेंशन. एंड बॉबी देओल आजकल जिस किस्म के रोल में भी आते हैं कमाल कर ही लेते हैं. बट भाई साहब, मैंने कल अल्फा देख ली OTT में. ये कह तो दिया मैंने लाइन बॉबी देओल के बारे में, बट फिर से सोचने का मन कर रहा है कि वो कर क्या रहे हैं. मतलब यू नो ही नीड्स टू एक्सपेरिमेंट अगेन विद हिमसेल्फ. सो फ्राइडे नाइट बंदर रिलीज कर चुकी है, स्ट्रीम हो रही है, गो गिव इट अ वॉच और मुझे बताना कि अगले हफ्ते कि कैसी लगी आपको. फिलहाल आपसे मेरा सवाल यह है कि फ्राइडे नाइट को आप सीरियस सिनेमा चूज करते हैं या फिर वही हाथ में प्लेट लेके वो कंफर्ट फिल्म यू विल चूज जो कि आपने 20 बार देख चुके हैं. यार कॉल मी एट 972-235-5555 एंड टेल मी विच इज योर वीकेंड वॉच. फिलहाल अल्फा की बात हो रही है तो चलिए अल्फा ही सुन लेते हैं.

119 by the studio clock, and you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Rumita, and lunch hour hai bhai. Abhi tak agar decision nahi liya hai to meri baat sun lo, aur straight away go to page 3 eatery. Agar aapko sizzling kebabs aur flavorful chaat, yani menu mein dono tarike ke food options aapko milenge, kyunki main दोनों पे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ. इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस विच विल टेस्ट द राइट कॉज ऑफ योर टेस्ट बट सीरियसली इट हैज़ फ्यूजन बाइट्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, और क्या ही मैं बताऊँ. यानी कि बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड को अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न फ्लेयर देंगे, टेस्ट किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो सीरियसली यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. अबाउट पेज 3 ईटरी विच इज लोकेटेड एट हब 121. ब्रंच हो, लंच हो, डिनर डेट हो, या फिर मेरी तरह सिर्फ फूडी हो, खाने का मन को हुआ कुछ अच्छा, बस जाओ. पेज 3 लोकेशन अगेन हब 121 में लोकेटेड है. एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर द मेन्यू अ लिटल मोर, यू कैन विजिट page3eatery.com.

0: है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
2: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
1: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
9: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
1: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
10: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
11: My name is Ritika Anand, Sanyas Nema Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
10: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

यू नो जेन ज़ीज़ के लिए एक यू नो दिस कैन बी वन अनदर इंस्टाग्राम ऑडियोज, बट आस्क अस द मिलेनियल्स जिन्हें पता है कि व्हाट रेज द एल्बम ऑफ ताल हैड क्रिएटेड व्हेन इट रिलीज्ड बैक इन द डे 1997. यू आर लिसनिंग टू फिल्मी फ्राइडे विद मी रमिता ओनली ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio, and it is that time of my show jahan pe there is a giveaway. Yani ki giveaway time from San Idli. Yani ki aapko agar dhosas pasand hai, 100% pure vegetarian restaurant mein baith ke अगर आपको डोसास पसंद है, इडलीज पसंद है एंड मेनी अदर ऑप्शंस विच यू कैन एक्सप्लोर इन देयर मेन्यू दैट इज इन सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लोकेटेड एट द हाईवे 121 एंड कस्टर जंक्शन. क्रिस्पी डोसास हो, फ्लफी इडलीज हो, कंफर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स हो, और पता है क्या है, शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर से केटरिंग सर्विसेज तक एवरीथिंग यू कैन गेट इन सैन इडली. बट मेरे साथ अभी अगर आपने ये क्विज खेला तो जीत सकते हैं एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन वही शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मैं कुछ क्लूज देने वाली हूँ जिससे यू कैन गेस द नेम ऑफ अ मूवी एंड विन दिस गिवअवे. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. तो चलिए शुरू करते हैं. सिंपल है, क्लूज ध्यान से सुनिए क्योंकि अगर आप बॉलीवुड बफ है देन ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है. तो द हीरो ऑफ द मूवी, द मेन एक्टर ऑफ दिस मूवी, स्टॉक सगल, इतना कि उसके शादी के दिन पहुंच के उसकी शादी भी बर्बाद कर दी. अब शादी बर्बाद होने के कारण लड़की चली जाती है डिप्रेशन में क्योंकि उसका फियांसे बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा जाता है और इवेंचुअली He dies. I mean the fiance dies. तो इसी you know पछतावे से the hero of this movie goes after this heroine of this movie. पर माफी तो उनको मिलती नहीं है. वो लोग दिल्ली जाते हैं, सेम पॉलिटिकल पार्टी, कॉलेज वाली यूनिवर्सिटी वाली ज्वाइन होते हैं. बट इन द एंड ऑफ द मूवी द हीरो डाइज हिम सेल्फ, यानी कि रिवेंज स्कीम काम करता है और मूवी ऐसे ही एक सैड नोट में खत्म हो जाती है. टूटे दिल से अगर आपने ये मूवी देखी है तो आंखों से नायग्रा फॉल्स ही बहने वाले. स्टूडियो का नंबर इज अगेन नायग्रा फॉल्स ही बहने वाले. स्टूडियो का नंबर इज अगेन 9722355555. चलिए एक छोटा सा क्लू और दे देते. द नेम ऑफ द मूवी इज वेल इट स्टार्ट्स विद द लेटर R. Call me and tell me and win these fluffy dhosas and filter coffee from San Idli Vegetarian Restaurant.

सिंपली लव द फैक्ट के इतने सारे बॉलीवुड बफ से हमारे DFW एरिया में जो हमें सुनते हैं. डेफिनेटली यार, फनीशा इज योर फिल्मी पार्टनर ऑफ योर डे टू डे गो टू स्टेशन और बॉलीवुड स्टेशन इन DFW. सो फिल्मी फ्राइडे में मैंने यानी कि रुमिता ने एक सिंपल सा सवाल पूछा था दैट यू हैव टू गेस द मूवी विद द क्लूज दैट आई हैव प्रोवाइडेड एंड येस मोस्ट ऑफ यू आर राइट. द मूवी नेम इज रांझना. बट सैन इडली की तरफ से आई कैन चूज ओनली टू विनर्स. फिलहाल हमें तो सिर्फ एक ही विनर चूज कर किया मतलब करते हैं हम जनरली फॉर आर गिवअवेज. बट सैन इडली इज कंसिडरेट इनफ के वो ना आई मीन देर वेलकमिंग यार, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी तो समझो. सो आई हैव टू विनर्स हु हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो नहीं पर फास्टेस्ट फोन फर्स्ट विद द करेक्ट आंसर. एंड द नेम्स आर भाविक गांधी जी एंड दीपा साइनी जी. कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू. यू गाइज विन वन धोसा, एनी धोसा ऑफ योर चॉइस एंड वही शहर की बेस्ट कॉफी फिल्टर कॉफी फ्रॉम सैन इडली इंडियन वेज रेस्टोरेंट. फिलहाल रांझना की बात हो रही है तो क्यों ना उनके म्यूजिक को रिविजिट किया जाए. एंड ऑफकोर्स AR रहमान है भाई, इग्नोर थोड़ी कर सकते. You're tuned in to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Filmy Friday with me, Rumita.

You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Filmy Friday with me, Rumita. And aaj hai 28th of August, yani ki फ्राइडे भी है और राखी भी है. यू नो, कॉलेज और ऑफिस में रक्षाबंधन का दिन किसी फेस्टिवल से कम और किसी सस्पेंस थ्रिलर से ज्यादा नहीं होता है. आई मीन, लड़के तो दूर से किसी लड़की के हाथ में अगर राखी लेते हुए वो आ रही हो ना, अप्रोचिंग दैट गाई, वो तो भाई कल्टी मार ही लेता है. और कुछ लड़कियां भी हाँ फुल फिल्मी रिवेंज मोड में होती है कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट इग्नोर की थी, रुको आज तुम्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप देती हूँ अपने भाई जोन का. कहीं कैंटीन में चेस सीक्वेंस, कहीं ऑफिस डेस्क के नीचे स्ट्रेटेजिक हाइडिंग, और कहीं बेचारा बंदा क्रश को इम्प्रेस करने गया होगा लेकिन वापस कलाई पे राखी और हाथ में मिठाई लेके आया है. सो मुझे आप कॉल करके बताइए कि कॉलेज या ऑफिस में राखी से बचने और किसी को जबरदस्ती राखी बांधने का आपका सबसे फनीएस्ट इंसिडेंट क्या था. क्या आपका क्रश कभी ऑफिशियली आपका भैया बन गया, या आपने किसी को राखी देखते ही, जैसे कि मैंने कहा, यू टर्न मारते हुए पकड़े गए. आपको मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ. आई कैन टेल यू एक्चुअली कि मेरे साथ ये हुआ था कि एक बंदा था जिसे मुझसे राखी नहीं बंधवानी थी, तो वो बेचारा मेंस वॉशरूम में छुप के बैठा था. कैन यू इमेजिन? आई एम श्योर यू टू हैव दीज काइंड ऑफ स्टोरी, बहुत सारी होगी. तो स्टूडियो का नंबर आपको तो याद ही है, 9722355555. कॉल मी एंड टेल मी योर फनीएस्ट राखी मोमेंट. वैसे हैप्पी रक्षाबंधन to all.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is a Filmy Friday with me, Ramita, only on आपका जो सेगमेंट आफ्टरनून अड्डा शो आप सुन रहे हो उसका ये सेगमेंट है फिल्मी फ्राइडे एंड दिस पार्ट ऑफ माय शो इज प्राउडली ब्रॉट यू बाय एजी फिनटेक्स जो कि है यूएस में अ फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स चाहे आप इंडिविजुअल हो या फिर आपका कोई स्टार्टअप है या फिर एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है एजी फिनटेक्स और अनिल ग्रंथी जो कि फोर्ब्स फिनेंशियल काउंसिल के मेंबर है वो ऑफर करते हैं इनोवेटिव financial solution which is tailored for your needs chahe bookkeeping ho payroll accounting ho bank and credit card reconciliations ho ya fir proactive tax planning tax compliance financial reporting yani ke पैसों के मामले में अगर कोई भी एडवाइसेस चाहिए आपके फिनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एंड मेक यू ऑर्गेनाइज्ड कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी तो ट्रस्ट एजी फिनटेक्स क्योंकि उनकी ट्रस्टेड एफिशिएंट एंड कमिटेड टीम आपके सक्सेस के लिए ही बनी है कॉल 4699429888 दैट्स 4699429888 और सिंपली विजिट agfintax.com टुडे एंड मेक एजी फिनटेक्स योर पार्टनर इन बिल्डिंग योर स्ट्रॉन्गर फिनेंशियल फ्यूचर चलिए पैसों की अगर बात करते हैं तो बताइए मुझे कितने लोगों ने ये गाना सुना है और अगर गेस कर पाए कि ये कौन से सीरीज की है तो मेरी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving. Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
4: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
6: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
9: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आर स्ट्रेटजी।
13: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
17: वही आवाज
9: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

You're listening to 104.9 FM, Funny Share Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita. और वीकेंड्स की बात करते हैं. हम इतने सारे प्लान्स बनाते हैं मूवीज देखने के, बाहर खाने पीने के, फन एक्टिविटीज करने के बारे में हम सोचते हैं. एंड अगर फैमिली आउटिंग हो तो एक दिन में यार $150-200 ऐसे ही निकल जाते हैं. खाना पीना इतना कॉस्टली जो हो गया है हर तरफ. बट कभी आपने सोचा है कि सिर्फ $85 अगर महीने के आप अपने से अलग करके रखो और उसे इन्वेस्ट करो एट द पैशन हेल्थ डायरेक्ट स्कीम में, तो आप अपने हेल्थ के लिए कितना कुछ कर रहे हो. यानी कि इफ यू आर आउट ऑफ द पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर नेटवर्क और यू हैव नो हेल्थ इंश्योरेंस, देन यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज पैशन हेल्थ डायरेक्ट इज देयर फॉर जस्ट $85 अ मंथ फॉर एन अफोर्डेबल प्राइमरी केयर. अब इस मेंबरशिप में क्या क्या होता है? इस मेंबरशिप में होता है प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ जहां पे आप पहुंच नहीं पा रहे हो डॉक्टर के पास, आप कॉल पे भी डॉक्टर्स को ऑनलाइन में भी यू कैन टेक कंसल्टेशन एंड केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस यू गेट 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. यार इतना कुछ एंड सिर्फ $85 अ मंथ. यार नेक्स्ट टाइम अपने फैमिली आउटिंग के बारे में सोचना भी तो पहले इसके बारे में सोच लो, बिकॉज एट पैशन हेल्थ दे डोंट consider their patients as patients only, they consider them as family members. Call kijiye ya text kijiye 214-666-6259 or you can simply visit passionhealthphysicians.com. kyunki passion health mein na unka, I know there is a calling ke when your passion meets your profession, that's when it got the right chord strikes, but truly your health is their passion for passion health primary care and definitely for our community. And statutory warning, this program is not a health insurance. Obviously terms and conditions apply to hai hi, so questions agar hai direct call kar lo aur apni clarity le lo, but passion health direct lena na bhulna.

14 minutes past 2 o'clock, you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. Yaar, Instagram, Facebook kholte hi ek hi cheez baar baar ek hi video nazar aa raha hai. Wo ye hai ke ek bahut hi dhamakedar reunion ho chuka hai of the Dil Chahta Hai cast and crew. There's a round table, there's a discussion, there's interview session, and there is a fun event that has taken place where Aamir Khan, Saif Ali Khan, Akshay Khanna, Dimple Kapadia, Sonali Kulkarni, even the director Farhan Akhtar, Ritesh Sidwani, the producer himself, everybody came together to celebrate the 25 years of Dil Chahta Hai. And my God, agar aaj bhi agar movie aap OTT pe ya ghar pe baith ke kisi bhi kone mein baith ke dekhe, chahe clippings bhi ho, kyun na ho, you will still enjoy it. And that's the impact this movie has and still will be having throughout these years and in future as well. So this is the Bollywood Nostalgia segment, jahan pe main poochti hoon aapse ki agar aapko ek movie, किसी भी पुरानी मूवी को री-रिलीज करना हो थिएटर में, चलो आपके हाथ में एक पावर मैंने दे दिया कि एक मूवी को आपको री-रिलीज करना है, तो वो कौन सी होगी एंड क्यों आप उसे थिएटर में वापस जाके देखना चाहोगे. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. कॉल मी एंड टेल मी योर बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया. और अगर कास्टिंग भी डिफरेंट हो तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं. यू नो दिस इज फिल्मी फ्राइडे विद मी रिमीता.

You know, I watched Cocktail 2 in the OTT very recently. घर पे बैठी थी and I really wanted to have a fun watch. It is a fun watch. I'm not declining the fact कि हाँ और थोड़ी better हो सकती थी in terms of everything that was there in Cocktail 1. But this movie entirely is a celebration. अब अगर आप 70% of the movie को if you consider, तो शादी के preparation में ही इतना बीत जाता है, सेलिब्रेशन में ही इतना टाइम खर्च हो जाता है कि स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी. वैसे सेलिब्रेशन से याद आया, अगर आप अपना वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हो ना, तो अपने दिमाग से वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग निकाल दो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मोमेंट एंजॉय करना है. क्योंकि सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जिम्मा है वो वेनेसा इवेंट्स ले लेंगे आपके लिए. यू नो, इंट्रिकेट डिटेलिंग ऑफ अबाउट द वेन्यूज, डिकोर, कैटरिंग. और कैटरिंग की बात करें हम अगर, तो बसेरा ग्रैंड, दैट इज द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड, विल बी प्रोवाइडिंग द डिलिशियस केटरिंग सर्विसेज अलोंग विथ द सिग्नेचर इवेंट्स का डिकोर विथ फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग बॉन्डेड ऑल टुगेदर एट द वेनेसा इवेंट. सो यू कैन फोकस ऑन मेकिंग योर मेमरीज वाइल दे कैन टेक केयर ऑफ द रेस्ट. यार इतना लोड नहीं लेने का दिमाग में. कॉल हरी बसेरा टुडे एट 469-442-8770. दैट्स 469-442-8770. एंड वेनेसा इवेंट्स को अपना सेलिब्रेशन पार्टनर बना लो यार. और रही बात कॉकटेल 2 की, सैड मत हो, कॉकटेल 1 का गाना सुन लो, मूड सही हो जाएगा.

खट्टी मीठी बातें तो चली रही थी 12:30 बजे से, आपका थे पता नहीं, बट मेरा टाइम तो हो चुका है। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं फिल्मी फ्राइडे के क्लाइमैक्स पर। आपके कॉल्स ने ना अब वापस से ये प्रूव कर दिया है कि DFW ट्रैफिक अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, टेक्सस वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, बट बॉलीवुड के लिए आपका ये प्यार बिल्कुल परमानेंट है। दिस इज रुमीदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस शो, यानी कि फिल्मी फ्राइडे। फ्रॉम दिस फ्राइडे मिलूंगी मैं अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन फनीशिया रेडियो 104.9 FM। तब तक वीकेंड को फुल वॉल्यूम पर एंजॉय कीजिए, दिल खोल कर हंसिए, और याद रखिए कि पिक्चर खत्म हो सकता है लेकिन अपना अड्डा कभी खत्म नहीं होगा। ऑलवेज ट्यून इन टू फनीशिया रेडियो। जाते जाते आपको एक क्या कहूँ मैं, वही जो गाने हैं ना जो करेक्ट नोट्स रीच करते हैं, करेक्ट कॉर्ड्स को पकड़ते हैं इमोशंस के, वो वाला गाना छोड़ के जाती हूँ आपके लिए। लिसन टू इट एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस।

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
6: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
10: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
5: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
10: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
5: इंडिया तक।
10: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
6: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335। Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फनीशर रेडियो. सुन रहे हैं आप, दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद द सुनहरी किरण. मंडे थ्रू फ्राइडे मैं आपके साथ रहती हूँ 2:30 से 5 बजे तक. 2:30 PM टिल 5 PM मेरा और आपका सफर रहता है. दिस म्यूजिकल जर्नी दैट आई ब्रिंग टू यू एंड यू आर अ पार्टनर इन दिस. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. आज है जी फ्राइडे. फ्राइडे इज वन, आई लव फ्राइडेज बिकॉज इट इज द beginning of the weekend, and then I love Fridays because I have Kids Junction on Friday 3 PM till se leke 4:30 PM tak bachchon ki call hogi live. Bachche apni request kar sakte hain mere saath. Hollywood gana nahi ji, Bollywood aur Hindi, that is the request that I'm requesting you to make. And then from 4:30 till 5 PM we have added a new segment, that is Chiller Party. That is aap jaisa koi pyara sa nanna munna sa jo hamare bachche baithe hame sun rahe hain unme se koi ek RJ aata hai aur mere saath host karta hai is show ko Chiller Party ko for that half an hour. So I'm extremely excited about that segment. I love meeting all you kids and your parents, and it is so much fun. So, लेकिन ये जो आधा घंटा है, this is called mix pot. इसमें लेके आती हूँ मैं आपके लिए कुछ नए और कुछ पुराने गाने. और पुराने गाने से हम शुरू करते हैं और उससे जो मुझे नया गाना याद आता है वो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ. So let's begin. This is mix pot right here on Sunehri Kirat.

मिक्स स्पॉट सुन रहे हैं आप राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और इस गाने से मुझे मेरे दिल के चैन से एक दिल दिल दिल गाना याद आया जो अभी अभी लेटेस्ट एक दीवानी की दीवानियत में पिक्चराइज हुआ था. ऑल्दो दैट वाज आल्सो अ रेंडिशन और रीमिक्स आप कह लीजिए ऑफ एन ओल्ड सॉन्ग जो कि बल्कि वो इतना ओल्ड नहीं था, घायल मूवी का वो गाना है. लेकिन वही आपके लिए प्ले करूंगी. उससे पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं और ढूंढ रहे हैं स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, तो मैं आपको बताऊं जी कि तारा Commercial Energy is here to help you. सर्व कर रही हैं प्राउडली टेक्सस बिजनेसेस को सिंस 2002. कंपेटिटिव रेट्स हैं, रिलायबल सर्विस है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपकी नीड्स के इर्द गिर्द कस्टमाइज करते हैं वो एनर्जी प्लान. सो इट इज एब्सोल्यूटली अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. गिव दम अ कॉल, यू हैव एनी क्वेश्चन, देर इज नो हार्म इन कॉलिंग एंड डिस्कसिंग योर पॉइंट्स. 844-428-2808 is the number. Ya phir aap unki website visit kijiye, which is taraenergy.com. TARA taraenergy.com.

मिक्स स्पॉट में कुछ नए और कुछ पुराने गाने। अब वक्त हुआ है एक पुराने गाने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रक्षाबंधन इज हेयर जी, और इस स्पेशल डे फन एशिया और चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट वांट्स टू हेयर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल स्टोरी विद योर सिबलिंग। यू हैव टू रिकॉर्ड अ 1 मिनट वॉइस नोट एंड व्हाट्सएप इट एट दिस नंबर 2148377147। और इससे क्या होगा, यू कैन एंटर इनटू विनिंग एक्साइटिंग डेली प्राइजेस, या फिर आप ग्रैंड प्राइज जीत सकते हैं, विच इज एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट। जो आपका ये कॉन्टेस्ट है, इसकी मजीद डिटेल्स फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पे प्रोवाइडेड हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को चेकआउट कीजिए। इफ यू हैवंट स्टार्टेड फॉलोइंग अस, इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट फॉलोइंग अस, सो दैट यू कीप अब्रेस्ट एंड अपडेटेड विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इज द प्लेस वेयर यू मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। दे आर लोकेटेड इन ड्यूरेंट। यू मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू प्ले और टू participate. Terms and conditions apply, and while you are there, please play responsibly. Mixpot mein agla gana taken from the movie Guide.

ऑल राइट, और अब आया है जी आपके लिए मिराज लाउंज की तरफ से एक गिव अवे. एंड दिस इज अ प्लेस, यू नो, आपका नेक्स्ट हैंगआउट स्पॉट हो सकता है. जाइए, विजिट कीजिए मिराज लाउंज. मिकिनी रैंच पार्कवे पे लोकेटेड है जी. दिस इज वेयर यू विल फाइंड प्रीमियम हुक्कर्स एंड डिलिशियस बाइट्स एज वेल एज हैंड क्राफ्टेड कॉकटेल्स होती हैं यहाँ पे. लाइव म्यूजिक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है. एक्साइटिंग डीजे नाइट्स करते हैं, लेडीज नाइट भी होती हैं. एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट देन यू विल हैव अ कॉलेज नाइट देयर एज वेल. चेक इट आउट, दिस इज मिराज लाउंज लोकेटेड ऑन मिकिनी रैंच पार्कवे. हैप्पी आवर चलता है इनका मंडे थ्रू थर्सडे 11 AM टिल 6 PM, फीचरिंग हुक्का स्टार्टिंग एट 24.99 एंड शॉट्स एट 4.99. सो हैप्पी आवर क्या हुआ जी, हैप्पी डे ही हुआ मंडे थ्रू फ्राइडे 11 AM टू 6 PM. एंड नाउ इट इज टाइम chance for you to win $20 off your minimum dine-in bill of $50 or more. To aap wahan jaiyega, $50 ka aapka bill banega, to $20 aapke off honge if you win this contest right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. To ab dekhiye ji, mix pot ho raha hai. एक पुराना गाना चलता है, एक नया गाना चलता है, और पुराने गाने से ही जो मेरे जहन में नया गाना आता है वो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ. सो आप मुझे कॉल कीजिए 972-235-5555 पे और मुझे बताइए कोई एक ऐसा पुराना गाना जो आपको अच्छा लगता है, और उस गाने को सुन के आजकल का कौन सा, मतलब नॉट रियली आजकल, 90s से आगे का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको ख्याल आता है. जैसे ये पिया तो से नैना लागे से, मुझे आजकल का ये लेटेस्ट गाना जो याद पिया की आने लगी का रीमिक्स बनाया दिव्या खोसला कुमार ने, नेहा कक्कड़ आवाज में, वो याद आया. सो मैं आपके लिए वो प्लग कर रही हूं, और आप मुझे कॉल करके बताइए अपना पुराना गाना और उससे रिलेटेड कोई नया गाना. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. दिस इज मिराज लाउंजेस, $20 ऑफ विद अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर.

0: Alright, जी, मिराज लाउंज की तरफ से ये गिव अवे आया था $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ 50 और मोर. और आपको बताना था, मुझे ऐसे ही जिक्र करना था कि कोई पुराना गाना बताइए और उससे आपको क्या नया गाना याद आता है. तो आज की जो हमारी लकी विनर्स है, मैंने दो विनर्स सेलेक्ट करने थे. दो लकी विनर्स हमारे हैं जी, अनीता एज वेल एज पल्लवी. बोथ ऑफ यू कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन दिस मिराज लाउंज गिव अवे. अनीता को याद आता है जी टिप टिप बरसा पानी, और उसका नया वर्जन भी उनको याद आ रहा है. जो है मैं अपने इस यू नो मिक्स पॉट में प्ले करती हूँ कोई पुराना गाना और उससे कोई एक वर्ड निकालती हूँ, जैसे कि अभी पिया से वर्ड निकाला, पिया तो उसे नैना लागे रे, तो मुझे याद आया, याद पिया की आने लगी. या फिर हमने सनम को खत लिखा तो याद आया, खत लिखना है ये पर कैसे लिखूं. तो अनीता और दूसरा पल्लवी, कांटा लगा उनको याद आ रहा है पुराना एज वेल एज नया. सो आप दोनों कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड टू ऑल ऑफ यू हु कॉल्ड अस एंड पार्टिसिपेटेड, बहुत बहुत शुक्रिया. अनीता और पल्लवी, हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 or more. This is Mix Pot. और ये गाना अगला है जी, बहुत ही खूबसूरत किशोर कुमार साहब की आवाज में. This is रूप तेरा मस्ताना.
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
7: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% discount.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
12: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
13: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल. 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
14: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
15: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
7: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
16: एक और लड्डू ले लो.
17: थोड़ी और बिरयानी.
16: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा.
18: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए.
19: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
20: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
21: तुझे देखा तो ये जाना सनम.
22: 90s
0: का रोमांस 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो गाइए झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने लिमिटेड सीट्स फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM

0: जी हाँ, फोन लाइंस बहुत ज्यादा हैं और कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा हैं, तो बेयर विद मी गाइस. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
1: माय नेम इज मेजान.
0: मेजान?
1: या.
0: ऑलराइट मेजान, व्हाट ग्रेड आर यू इन?
1: आई एम इन थर्ड ग्रेड.
0: थर्ड ग्रेड, एंड व्हाट इज योर सॉन्ग रिक्वेस्ट?
1: माय सॉन्ग रिक्वेस्ट इज आरी आरी फ्रॉम धुरंधर.
0: यस, Ari Ari from Dhurandhar. And tell me, Mezan, anything interesting that happened in your school that you'd like to share?
1: Yeah, we got to get our Chromebooks.
0: You got a what?
1: Chromebook.
0: Oh, and
1: laptop.
0: Okay. Oh, nice, nice, very nice. And they are giving it to you in third grade?
1: Yes.
0: That is lovely. Have you started using it? Are you getting the hang of it, or are you still learning?
1: I'm getting the hang of it.
0: Okay, that is so good. I am so happy to hear that. Enjoy your new Chromebook and thank you so much for your call. Fanisha Radio, you are live on air. What is your name?
2: My name is Rakeya.
0: Akshaya?
2: My name is Rakeya.
0: Okay, how about you spell it for me, please?
2: What?
0: Spell your name for me.
2: Okay,
0: Rukaya, what grade are you in, beta?
2: Second
0: grade. And what song would you like to listen to? Song request? अपनी पाठशाला, मस्ती की पाठशाला. यस श्योर, आई विल प्ले दैट फॉर यू. डू यू हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू शेयर अबाउट योर स्कूल, योर क्लास, एनीथिंग गुड?
2: टुडे वी डिड अ टेस्ट. ऑफ वर्ड.
0: ओके.
2: ऑफ माय वर्ड.
0: एंड डिड यू डू गुड?
2: And we also did science.
0: Okay, lovely.
2: I did for the science test.
0: Okay, so you had lots of tests today. So good luck with that. I hope you did really well. Thank you so much, Rukaya. And you have a lovely rest of your day.

0: में गाओ है रेला ऊं चपाऊं यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
1: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
1: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
8: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
11: होचो
12: होको
11: होचो
12: होको
11: होचो
12: इट्स होको।
1: अरे बस भी करो यार।
12: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
1: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
13: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
14: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
8: तुमसे मिलके दिल का है.
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
9: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो.

कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Okay, guys, thank you so much for your calls and for participating in this giveaway. Fusion Republic Indian Kitchen and Bar, located in 8080 Walton Boulevard, Irving, brought to you this giveaway. This was a Siraga Samba or Mutton Biryani or Vegetable Dum Biryani. You can win any one of these. And thank you for your calls. Alina, Nile, Vidanch. Alina's favorite dream lunchbox is Alfredo pasta with tomatoes and oranges. That is amazing. Along with Nile, jinko chole puri bhat लगते हैं लंच बॉक्स मिले जाने के लिए, इट इज द कंफर्ट फूड दैट ही एब्सोल्युटली लव्स। और फिर वेदांश, जिनको पास्ता, वाटरमेलन जूस और चिप्स का कॉम्बिनेशन अपने लंच बॉक्स में हमेशा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गाइज, थैंक यू। अभी भी फोन लाइंस बाज हो रही हैं, लेकिन गाना खत्म हो चुका है, कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो गया है। मैं विनर अनाउंस करने वाली हूँ। थ्री में से हमारा जो लकी नंबर निकला है इस वक्त विन का, वो है जी निले मातपाल। सो निले, नंबर टू, कंग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है ये फ्यूजन रिपब्लिक का गिव अवे। Give us 2 days to send your name and number to the restaurant, and then you can, you know, go with your mom and dad and enjoy. You'll have 7 days to avail any one of these items. And to all of you guys, bahut bahut shukriya. Thank you so much for participating. Your phone call and your participation means a lot. Thank you.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchase. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
8: Beta, 95% aaye?
9: Haan, mummy.
8: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
10: Mera?
8: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Floors clean.
13: Check.
12: Windows clean.
13: Check.
12: Kitchen clean.
13: Check.
12: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
14: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where duct time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
16: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
17: डील कहाँ?
16: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या। डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
17: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
18: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
11: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
19: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
20: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
20: इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
21: मैं हीरो।
22: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
23: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
22: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
23: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
22: ये क्या होता?
23: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस एंड एलन।
24: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
22: ये क्या होता?
23: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस एंड एलन।
24: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
9: serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
10: And now at a bigger location, just three doors down, with limited reservation available.
12: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
21: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
12: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
24: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक.

0: करके।
1: और अगर आप भी कहीं जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट या फिर कोई स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना, साथ ही साथ पेपर वर्क, लीगैलिटीज और इतनी सारी निटिग्रिटीज होती हैं सिचुएशन की कि हमें कई बार तो मालूम ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ अपनी वेलबींग और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है आपने, इमोशनल एज वेल एज फिजिकल। तो आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड लेट अटर्नी Omar Khwaja do the rest for you. Contact attorney Omar Khwaja. He and his team will not only fight your case for you, they will get you the best compensation that you deserve. Aur fees ki baat hai to bilkul pareshani ki baat nahi, aapko kuch pay nahi karna jab tak ke aap case ko jeet nahi jate. So that is a win-win situation for you. स्पेशली इस मुश्किल के वक्त में एक राहत की खबर है ये। आप अटर्नी उमर ख्वाजा को फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द नंबर इज 4693005046। 4693005046 इज द नंबर। यू कैन विजिट द वेबसाइट विच इज attorneyomar.com, OMAR। अच्छा, मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट लाइंड अप थी जी, तो एज वी आर प्रोसीडिंग मैं वन बाय वन आप सबकी रिक्वेस्ट प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ। दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज प्लेड फॉर पुरवित। पुरवित, दिस इज छोटा बच्चा।

राइट. और आपको बताते चलें जी कि पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक इज प्राउडली सर्विंग द कम्युनिटी और अब दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लिनोक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर संदीप आचार्य. लिनोक्सी मेडिकल पे आपको मिलेगा प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग भी मिलेगी. एक्सरे करवाना है आपने, कोई मसला नहीं, यू विल फाइंड इट एट द स्पॉट. सीटी स्कैन्स लिनोक्सी मेडिकल, सब कुछ यही मिलेगा. कार्डियक डायग्नोस्टिक और साथ ही साथ हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी, ऑल अंडर वन रूफ. एंड द बेस्ट पार्ट, दे आर ओपन 7 days अ वीक, 8 AM टू 8 PM. And walk-in is welcome anytime. You don't even need an appointment. So this is a brilliant situation for you. लिनोक्सी Medical Visit कीजिए, located in Frisco. This is Texas Primary Care. अच्छा जी, इसी के साथ we have about around 15 minutes जब मैं आपकी request ले रही हूँ, और उसके बाद 4:30 till 5 PM बच्चा पार्टी, we will have chiller party. That is one of you is going to be in the studio and will be co-hosting the next half an hour with me. So let me tell you, if you are interested in co-hosting with me, then, you know, we have our posts on social media. We're going to post one today as well on Instagram especially. You can go to Instagram, go to the comment box, write your, this is for parents. Parents, write your child's name, their grade, their age, and someone from our team will get back with you. If you are interested, you can call me also and I can note the information and give it to my department, the team, and they will get back to you when they will have the spot. So and the studio number is 972-235-5555. I'm still taking requests for you for the next 15 minutes. I have so many requests lined up, so let's go to the next one.

0: All right, we are almost getting close to our chiller party segment where our co-host, like you, will be amongst us and he will be co-hosting with me today. But before I head on to a short break and then enter into chiller party with Sunehri Kiran on Kids Junction, I must tell you, this is for all the parents. Get ready for a night filled with timeless melodies, unforgettable romance, wo 90s ka pure nostalgic music aur romance ka zamana aapko definitely yaad hai aur agar yaad hai aur wo आवाज आप कैसे भूल सकते हैं जिसने 90s को बनाया इतना रोमांटिक और इतना ब्यूटीफुल हमारे लिए. दैट इज कुमार सानू. कुमार सानू आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट अनफॉरगेटेबल 90s लेकर ऑन सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. सो जरूर आप इस इवेंट को इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इसका हिस्सा बनिए. यू गोना लव लिसनिंग टू हिम लाइव. यू फील द म्यूजिक लाइव स्ट्रमिंग अराउंड यू. लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं जी. फ्री पार्किंग है. Exclusive meet and greet options bhi available hain. So book your tickets by logging on to eventbrite.com. Ya phir aapke paas koi bhi sawal hai, to give them a call 214-869-2668. 214-869-2668 is the number. This event is presented by Focus Entertainment and Fortune Group. Kumar Sanu, Unforgettable 90s on September 11th at the brand new Robinson Fine Arts in Plano. So, tickets lijiye eventbrite.com pe. Yesterday, we had an absolutely brilliant show in wo 90s ka Bollywood. I played some beautiful Kumar Sanu's music. There was just a glimpse of what you will miss if you will not buy this ticket. So, go ahead and buy that. And with that, we are heading on to a short break. The Chiller Party RJ is in this studio. We'll see you after the break.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: We need to talk.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing. It's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
12: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. उनका AI powered platform real time rates compare करता है ताकि आपको मिले better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, हजारों families का भरोसा. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
15: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
16: भूख लगी
17: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
18: स्ट्रीट स्टाइल शॉट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
19: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
20: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
21: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर.
22: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
21: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
22: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
20: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.

0: लेकिन हम नहीं आज नादानिया, नो नादानिया जी, वी आर हेयर टू होस्ट चिलर पार्टी विद यू. देवांश इज हेयर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट ही हैज ब्रॉट फॉर अस टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. देवांश, व्हाट डू यू से?
1: आई फील प्रीटी गुड, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट इट दिस वीक बिकॉज़ वी डिडंट गेट आवर स्टफ रेडी, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड.
0: ओके, सो टेल अस मोर अबाउट रक्षाबंधन.
1: Okay, so Raksha Bandhan is a beautiful Indian festival that celebrates the special bond between brothers and sisters. On this day, a sister ties a Rakhi on her brother's wrist. The Rakhi may look like a colorful thread, but it carries a very special message. I will always care about you. The brother promises to love, support, and protect his sister. And then comes the most important part, the gift. Because promises are lovely, but gifts make this celebration even better. Raksha Bandhan teaches us that brothers and sisters may fight over toys, the TV remote, or the last piece of chocolate. But deep inside, they always love and care for each other.
0: That is so true and so heart-touching. With this, we are heading on to a short song. We will continue this Raksha Bandhan theme for this next 20 minutes. Stay tuned. Devansh is in the studio.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Term restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Hire moti, main na chahun.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: How may I help you?
10: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
9: Fikar not. We have the perfect solution.
11: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Don को पकड़ना मुश्किल ही नहीं.
13: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
14: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
11: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
13: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
15: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
16: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
15: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
16: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
15: और एंटरटेनमेंट,
16: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
15: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
16: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
17: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
18: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
19: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
18: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
19: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
1: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
11: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक उनकी जिम्मेदारी।
20: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

Hey,

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday, दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता, आ चुकी हूँ इन द स्टूडियोज ऑफ फन एशिया रेडियो. फ्राइडे के फ्राइडे रहता है आपका मेरा साथ. थैंक यू टू किरण, द अमेजिंग सुनहरी किरण, जिन्होंने अपना किरण फैलाया ये शाम, ये दोपहर पूरे, और अब 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लेकर आई हूँ अपना शो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. वैसे बोलने का मन आपको भी कर रहा है, मुझे भी. और इस जो म्यूजिक में आपने सुना ना कि मेरे प्लान में तो आप है, मुझे भी अपने प्लान में बिल्कुल रख लीजिए, क्योंकि रहने वाली हूँ 8 तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट तक ले आई हूँ ये शो. और ये वाला गाना अभी मेरे ना दिमाग, मुंह, सर, जुबा सब पे चढ़ा हुआ है. सो हम उतरने नहीं देंगे, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मुंह में भी चढ़ा देंगे. चलिए

Isn't that a cute cute song? मुझे एक्चुअली बहुत मेरे जुबान पे चढ़ा हुआ है. एंड प्यार मुझे तुम करती होगी, इक्का जीनो जेम्स बादशाह तीनों की मिली भगत ये गाना. एंड टोटली टोटली फील्स वेरी वेरी गुड. आई होप यू आर हैविंग अ लवली लवली टाइम दिस अमेजिंग शाम. पता है किसी बहुत ही खूबसूरत इंसान जो हमारे झेलू राम है वो कहते हैं, नवनीता यार पता है क्या हो जाता है, सुबह सुबह मुझ मासूम को जगाकर ये पूछा जाता है कि टाइम देखो क्या हो रहा है. यार भला टाइम तो वो खुद भी देख सकता है ना.

0: मुझ मासूम को जगाकर ये पूछा जाता है कि टाइम देखो क्या हो रहा है। यार भला टाइम तो वो खुद भी देख सकता है ना। आपके साथ ये हुआ है कि आपको जगा के पूछा गया, देखो टाइम क्या हो रहा है? अरे या आई नो, आई न्यू समबडी जिसको वो पूछा जाता था आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, और वो जाग कर उठ के बैठ कर बोलता था इधर उधर देखकर, मैं सो रहा हूं। सॉरी आप जाग जाइए, बिकॉज अभी शाम हो चुकी है 5 से 8, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सोने का बिल्कुल वक्त नहीं है। फ्राइडे इज द धमाल टाइम, जब वी ड्रॉप द वाइब एंड से ये फ्राइडे इज इन, द वीकेंड हैज स्टार्टेड अर्ली बिकॉज द फ्राइडे हैज अराइव्ड विद ऑल दीज लवली सॉन्ग्स विद माई शो, और फिर फ्राइडे को हम स्ट्रेच करके सैटरडे में और डाल के एक्स्ट्रा डे एड कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू वेट टिल सैटरडे टू स्टार्ट हैविंग फन on a weekend. Friday evening is the vibe for the Friday evening. वैसे एक ख्वाहिश आई है, फरमाइश आई है, क्योंकि जब मैं कहती हूँ वेलकम, स्वागत है, सस्रियाकाल, सलाम अलैकुम, कैमो नाचो केम छो, और करती हूँ आपका स्वैग से स्वागत, तो यहाँ पर हमारे सोहेल एंड मरियम की रिक्वेस्ट कि जब आपने स्वैग से स्वागत कर ही दिया नवनीता तो हो जाए, तो मैंने कहा हो जाए।
1: Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? You ready? Let's go. Yeah.

0: सबका स्वागत
1: टोटली स्वैग से कर चुके हैं हम आप सबका स्वागत एंड दैट इज फन एशिया रेडियो. सुबह शाम दिन रात रोजाना हर हफ्ते हम आते हैं हंसते हंसते और बस चाहते हैं आपकी एक मुस्कान. इसी वजह से तो हमेशा स्वैग से ही स्वागत रहता है. With that, moving into a break. लेकिन पता है दोस्तों, yes, we all are very, very devastated with what happened in Nepal. And ये जो nature से ये जो तबाही मच जाती है हर जगह, and there's so many lives which is lost. And to my entire Nepal community out here, you have family and friends there. A lot of prayers going out. There have been travelers from around the world. A lot of prayers going out to all of them. I hope they come out safe. Lot of people are right now not found, but just praying that they are somewhere safe and they can be retrieved from that crazy, crazy muddy water that is flooded everywhere. With that prayer, moving on to a short break. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फनीशा रेडियो पर. और यहाँ पर ये शो जारी रहने वाला है 8 तक, 5 से 8, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट माय शो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
3: PMJ Jewels now open on 13215 Main Street, Frisco.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम.
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
5: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
6: Dad, property papers कहाँ हैं?
7: Laptop में.
6: Investment?
7: Google Drive.
6: Insurance? Passwords?
7: बेटा don't worry, मुझे सब पता है.
6: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
8: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
8: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
4: अरे यार, घर मिल गया.
5: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
6: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
5: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
6: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट
7: Him. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
10: तुमसे मिलके दिल का है.
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ये पता है किसी ने कहा है, बात प्यार की हो और तुम मुझे याद ना आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यार इतना करो यार कि जब कभी भी प्यार की बात कहीं से भी आ जाए तो याद वो आए। पर ये टूटे हुए प्यार का ही हाल होता है कि सच वो प्यार आपको मिल जाए तो फिर भी वो प्यार वैसा ही प्यार रहता है जो हमेशा याद रहे। तो या फिर कोई बिछड़ जाए, छोड़ के चला जाए या टूट जाए, वही प्यार होते हैं जो जुदा हो जाते हैं ना, उन्हीं को तो याद किया जाता है। बाकी सब प्यार को तो हम एब्सोल्यूटली ग्रांटेड ले लेते हैं, क्यों होता है ना। वही तो बात है, जब प्यार को आप कंप्लीटली ताज़ा रखें ना, हमेशा गिव टाइम टू इट, create moments to again and again fall in love, that is when that love can stay forever. Otherwise, granted तो आप दिन को भी ले ले तो ऐसे ही बीत जाता है, कुछ नहीं होता उसमें। उसमें आप अपने नियम बनाएं, कुछ कुछ नया करने का लिस्ट बनाएं तो वो दिन खास बनता है। जैसे कि आपका बर्थडे खास हो जाता है क्योंकि आप खास बनाते हो, वैसे ही प्यार भी खास हो जाए अगर उसे आप खास बना दो तो। सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio, मेरे साथ मैं आपकी होस्ट नवनीता पांसे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।

वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, अगर ना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: Hoko.
4: Ocho.
5: It's Hoko.
6: अरे बस भी करो यार.
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
6: नाम Hoko हो या Ocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
7: ये तारा वो तारा हर तारा.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
12: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में? सब संभाल लेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: Floors clean.
13: Check.
6: Windows clean.
13: Check.
6: Kitchen clean.
13: Check.
6: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
14: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं.
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं.
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं.
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: Welcome back, दोस्तों. इस वापसी के साथ आज ये बोलना है कि आज रक्षाबंधन है. वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन. और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें कभी वर्ड्स ढूंढने नहीं पड़ते. भाई बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही खास होता है. बचपन में यू नो वो जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, मम्मी इसने मुझे ये नहीं दिया, ये चीज़ ले ली, एंड यू नो ऑल दोज नोक झोंक. और थोड़े बड़े हुए, मम्मी को मत बताना ओके, द बेस्ट सीक्रेट क्रीपर. और फिर जिंदगी आगे बढ़ती रही, सिटीज़ बदल जाते हैं, कंट्रीज़ बदल जाते हैं, अब तो मैं यही कहूँगी अपने लिए प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं. लेकिन वो एक इंसान जो आपके बचपन का ऑलमोस्ट हर वर्जन जानता है, वो वही रहता है, आपका प्यारा भाई मेरे लिए. और वो आपकी बहन भी हो सकती है. और मुझे लगता है रक्षाबंधन सिर्फ एक भाई का बहन को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस नहीं है. आज के ज़माने में प्रोटेक्शन दोनों तरफ से हैं. कभी भाई बहन की स्ट्रेंथ है, कभी बहन भाई का. कभी प्रोटेक्शन का मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, सिर्फ फ़ोन उठाकर कहना होता है, बोल क्या हुआ, टेल मी, मैं बता रहा हूँ ना. सो आज दिस वन इज़ फॉर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो पास हैं, जो माइल्स अवे हैं, जो रोज़ बात करते हैं, और वो भी जो महीनों तक बात नहीं करते, एक फ़ोन कॉल में वही बचपन वाली बॉन्डिंग पर आ जाते हैं, बस एक फ़ोन कॉल से. दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल, जो रिश्ता कहीं रुकता नहीं, हमेशा वहीं से शुरू हो जाता है जहां आपने उसे पार किया था. फॉर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स.

ये वो ओल्ड सॉन्ग था ना, उसी को ब्रांड न्यू फूलों का तारुका, वेदांग रायना, आलिया भट्ट, दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग दैट वी डिड इन द मूवी जिगरा, जिसमें बहन थी आलिया भट्ट वेदांग रायना की. सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग. सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो. मैं हूँ आपकी होस्ट. लेकिन पता है, ये जो हम रक्षाबंधन इन्जॉय कर रहे हैं, बना रहे हैं, इंटरेस्टिंगली राखी की कहानी ना सिर्फ भाई बहन तक लिमिटेड नहीं है. हमारी इंडिया में बहुत कुछ माइथोलॉजिकल भी होता है. इस फेस्टिवल का कृष्ण, द्रौपदी और लक्ष्मी, राजा, बाली जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी हुई हैं. और बंगाल में तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी को कम्युनल हार्मनी और यूनिटी का सिंबल भी बनाया था. मतलब एक छोटे से धागा, बट ओवर जेनरेशंस इट हैज रिप्रेजेंटेड समथिंग मच बिगर, लव, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिलोंगिंग. और बॉलीवुड ने जब इस इमोशन को पकड़ा है तो वो तो पकड़ेगा ही ना. ये भाई बहन के राखी का त्यौहार इज मोर देन जस्ट द थ्रेड.

यार वो घर की याद आ जाती है, जब भाई बहन और हमारी नोक झोंक याद आती है। आई ग्रू अप बिटवीन टू ऑफ माई ब्रदर्स, मैं मिडिल में हूँ, एक मेरे बड़े भाई है और एक मेरा छोटा भाई जो 1 ही साल छोटा है मुझसे। तो हम दोनों की ना नोक झोंक तो बुरी हद तक होती थी और लड़ाई हर समय। एंड ही ऑलवेज थॉट दैट जब उस मेरी शादी हो जाएगी ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बट दैट वॉज द मोस्ट रॉन्ग फीलिंग एवरीबडी एवरी ब्रदर हैज़, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा रोता है और वही सबसे ज़्यादा मिस करता है मुझे। सो यस, हैव बिन पैम्पर्ड, हैव बिन लव्ड। और घर की बात जब आई है, तब घर लेने में जो सपने बनाते हैं ना हम, वो घर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये सपने हमारी हकीकत में बना देते हैं ड्रीम होम मोर्गेज। जी, मौका ले रही हूँ, मौके पे चौका मार रही हूँ और बता रही हूँ, ड्रीम होम मोर्गेज हैं जो ये सारे घर के सपने पूरे कर सकते हैं। 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। लाइसेंस है वैसे 50 स्टेट्स में, इट्स नॉट ओनली टेक्सस दैट दे डील विद, दे डील विद एनी अदर स्टेट, इवन इफ यू आर मूविंग और यू हैव अदर फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर। देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर टू योर नीड्स। आप या फिर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स है, अपग्रेड कर रहे हैं या रीफाइनेंस कर रहे हैं, स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे। बेच रहे हैं का मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी अबाउट दैट, खरीदने में ही फर्स्ट टाइम होम बायर, फर्स्ट होम अपग्रेड कर रहे हैं या रीफाइनेंस कर रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर दबाइए 9722455626, या फिर विजिट कीजिए dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स। ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। जी, आज ये जो भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन जिसे हम मना रहे हैं, एक गाना जो मैंने शुरुआत करी जिगरा फिल्म से, लेकिन जो रियल आवाज़ थी ना वो रियल थी, और वो रियल जो हमारी दोस्ती होती है और हमारी फ्रेंडशिप और हमारी रिलेशनशिप भाई और बहन की, वो रियल आवाज़ सुननी है, दिस इज़ द वन।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sang, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
6: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
5: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
6: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
5: इंडिया तक।
6: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
7: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ?
10: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D5, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
12: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
16: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
17: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
16: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
17: और एंटरटेनमेंट,
16: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
17: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
16: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
18: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
8: Brand new Robinson Fine Arts Plano. गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप।
19: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनेजर रेडियो पर। रक्षाबंधन के बारे में बात कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग नॉस्टैल्जिक एंड आई एम गेटिंग इमोशनल बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। क्योंकि सबसे ज़्यादा आई थिंक हमें बचपन से हमारे सिबलिंग्स ही जानते हैं। वी हैव ग्रोन अप इन द सेम हाउस, सीन एवरीथिंग टुगेदर, और जो बिना बोले एक दूसरे को हम समझ लेते हैं ना, वो शायद कितने भी हमारे पार्टनर आ जाए, कभी भी आ जाए ज़िंदगी में, कोई भी आ जाए, इट नेवर हैपन्स दैट दे आर दे गेट अस द वे आवर सिबलिंग्स डू। एंड प्रॉब्ली द ओनली पीपल हु कैन इंसल्ट यू मर्सलेसली, और 5 मिनट बाद ही दे बिकम एक्सट्रीमली ऑफेंडेड अगर कोई और आपके साथ आपके लिए कुछ ऐसी वैसी बात कर दी तो। सीधा बोलेंगे, मैं बोल सकता हूँ मेरी बहन के लिए तुम कौन होते हो, एंड वाइस वर्सा। और सारी एम्बेरसिंग चाइल्डहुड स्टोरीज उन्हें पता होती है, टेरिबल फेजेस जो हमारी ज़िंदगी के फैशन के आए होते हैं, हमारी फर्स्ट क्रश जो वही जानते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है और एविडेंस के साथ। तो जब भी हम ग्रुप्स में बैठते हैं ना, वही हैं जो हमारा चिट्ठा खोल सकते हैं बिकॉज दे हैव सीन एट अस। बट मे बी दैट्स एग्जैक्टली वाई द रिलेशनशिप इज सो स्पेशल। They don't just know who you are today, they know who you were before the world knew you. तब से है हमारा रिश्ता सबसे खास, सबसे अटूट और सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद लोग जुड़े हैं, ये तो हमारे बचपन से जुड़े हैं, और सारे जो ओकेशंस होते हैं ना ये भाई बहन के इर्द गिर्द, दे मेक सच वंडरफुल मेमोरीज। जो इकलौता बच्चा है फैमिली का, वो नहीं समझ पाता ये सिबलिंग भाई बहन के रिश्ते, क्योंकि इवन द सेलिब्रेशंस बिकम शॉर्ट। और आज का ज़माना ऐसा है जहाँ पर बस एक के आगे नहीं। आई फील सैड कि ऐसा क्यों है, बिकॉज जो सिबलिंग्स के साथ बड़े होने का मज़ा है ना, वो अकेले नहीं है।

सुपर, दैट वाज द रक्षाबंधन स्पेशल. सुन रहे 104.9 एफएम फनीशा रेडियो मेरे साथ दोस्तों, 5-7 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑन. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एंड यस आई एम सो थैंकफुल इट इज फ्राइडे. और कल है सैटरडे, तो एक्चुअली हमारे घर में सेलिब्रेशन रक्षाबंधन की हो रही है कल, क्योंकि फ्राइडे तो काम होता है ना.

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और ये फ्राइडे के पहले आपको बता दूं कि श्रावण आ चुका है और श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज सेलिब्रेटिंग श्रावण मासम एंड 10 ग्लोरियस ईयर्स इन डैलस विद 10 स्पेक्टैक्युलर ऑफर्स। बहुत अमेजिंग ऑफर्स है, आप वहाँ पहुँच जाइए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ग्रेट ऑफर होगा। फ्री सिल्वर गोल्ड कॉइन्स, गिफ्ट्स टू डायमंड एंड सॉलिटेयर ज्वेलरी, plus exciting savings on gold and diamond jewelry. There's something special waiting for everyone. 10 different offers hain unke and the celebration is on. Abhi chalu hai aur September 17th tak rahega. So if you are thinking of buying your jewelry, it is the right now, the right moment at Shri Krishna Jewelers in Frisco. Abhi visit kijiye unhe 13145 Main Street par. They are in Suite 220 Frisco. और या फिर फोन कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 4302311111। श्री कृष्ण ज्वेलर्स सेलिब्रेटिंग 10 स्पार्कलिंग ईयर्स इन डैलस एंड यू नीड टू अवेल दीज अमेजिंग ऑफर्स। व्हाट यू से, है ना?

0: को यस्टरडे का मिस इंडिया का हवा हवाई विद आर वेरी ओन श्रीदेवी, वो जब राज चुराती हैं और उनका जो एक्सप्रेशन होता है अभी भी जब कोई राज चुरा लूँ कहता है, एंड यू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन ऑन श्रीदेवी। ओह माय गॉड, वी मिस सो मच। क्या क्या क्या गजब एक्ट्रेस, वी लॉस्ट इट टू सून। बट कुछ कुछ गाने जब भी सुनो रेडियो पर तो ऐसे हमारे जो थॉट्स हैं पहुँच जाते हैं उन टाइम्स पर जब वी हैड थॉट ऑफ, और वही थॉट में आज एक थॉट आ रही है, क्योंकि पता है 25 इयर्स हो गए हैं दिल चाहता है द फिल्म को। आमिर खान, सैफ अली खान, फरहान अख्तर, कल उन्होंने दे री यूनाइटेड इन मुंबई टू सेलिब्रेट 25 इयर्स ऑफ दिल चाहता है जी। और एक जो मिसिंग थे, एक फ्रेंड अक्षय खन्ना, ही वॉज मिसिंग बट हिज एब्सेंट हैज, लेकिन लोगों ने याद किया समीर, आकाश, फरहान टुगेदर, प्योर नॉस्टैल्जिया। क्या फिल्म थी, क्या फैशन था, क्या एक रुख बदला था फिल्मों ने, टॉकिंग अबाउट दैट जनरेशन। और पता है 25 साल इतने पुराना, इसका मतलब ये है हम ओल्ड नहीं हुए अभी तक। सिनेमा ही बस जल्दी जल्दी आगे चलती जा रही है, वक्त गुजर जाता है, अभी भी नहीं लगता कि दिल चाहता है जब हम बैठ के थिएटर्स में देख रहे थे वो कहानी 25 साल निकल जाएगी, और मैं अभी रेडियो में आपको बोल रही होंगी वो 25 साल पहले याद दिला रही होंगी। आई मीन कांट इवन इमेजिन 25 ईयर्स हैव पास्ड, बट दैट्स हाउ टाइम फ्लाइज।
1: Call it what you want, man. I call it the funk.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
3: Visit www.senadainc.com today.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
10: बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनीजा रेडियो पर. मेरा नाम है नवनीता पांसे, आज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑन ये शो जिसका नाम है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.

0: थैंक गॉड इस फ्राइडे जब हम बोलते हैं ना तब कुछ न कुछ नया भी हो रहा होता है. फ्राइडे को कोई नई फिल्म रिलीज हुई होती है या कोई ट्रेलर हैज बीन ड्रॉप्ड, उसी के बारे में चलिए बात करती हूँ. एक ट्रेलर अभी ड्रॉप हुआ है एंड दैट इज फॉर हैवान. वैसे सैफ अली खान के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं क्योंकि 25 साल हो गए दिल चाहता है को, जो मैंने अभी अभी आपको ब्रेक के पहले बताया. 25 इयर्स ऑफ सैफ अली खान और 25 इयर्स बाद भी गोइंग स्ट्रॉन्ग. हैवान में सैफ अली खान है और हैरान की बात, आश्चर्य की बात एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्षय कुमार इसमें विलन बने हैं और सैफ अली खान इज द हीरो. उसके पीछे लगे हैं अक्षय कुमार, यही ट्रेलर में नज़र आ रहा है. और अक्षय कुमार एक अंधे सैफ अली खान के पीछे पड़े हुए हैं और इसमें एक आई एम सो सॉरी, यू नो जब प्रमोशंस हो रहे होते हैं तो अक्षय कुमार ने कहा कि सैफ इज़ द हीरो, आई एम द वन क्रिएटिंग ट्रबल फॉर हिम. दैट्स अ फन रिवर्सल फॉर अक्षय, इज़न्ट इट. हमेशा वही स्टार रहते हैं और हर कोई उनके पीछे पड़ा रहता है, इस बार उन्होंने अपना ही रोल किसी को दे दिया या पलट दिया. और वाओ दैट्स गुड. हैवान इज सैफ अली इज आफ्टर इवन 25 इयर्स गोइंग स्ट्रॉन्ग. दैट्स अमेजिंग फॉर सैफ. कूडोज टू यू. सॉन्ग फ्रॉम
1: लेके जन्म
0: हैवान.
1: लेके पहला पहला कदम जब चलते हैं हम, उंगली थामे कोई. लिख रहे हो ना?

हैवान का ये वाला गाना मेरे हीरो है वो, नाइस ना, प्रीतम का म्यूजिक है, नाइस कैसे नहीं होगा। शान की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, सुपर, वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसमें सैफ अली खान इज नॉट द विलन बट ही इज द हीरो, विलन इज अक्षय कुमार। सुन रहे हैं 104.9 FM पानीजा रेडियो मेरे साथ। दोस्तों पता है एक डिफरेंट सी बात बताती हूँ, अच्छा पहले आपको ये बताती हूँ डिफरेंट सी बात कि अगर आप कभी भी फंस जाए ना अपने टैक्सेस में, समझ नहीं आ रहा पैसे अपने जो कमा रहे हैं उसको संभाला कैसे जाए, देयर इज़ वन एंड ओनली एजी फिनटैक्स इन टाउन एंड दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप इंडिविजुअल टैक्स फाइल कर रहे हो या स्टार्टअप हो या फिर कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हो, AG FinTechs offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll, accounting, and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. And they help you to keep your finances organized, compliant, and future ready. All these are so, so, so important here in America. To have everything compliant, trusted है, efficient है और committed है आपकी success के लिए। AG FinTechs आपके partner है, उन्हें partner बना लीजिए for your financial future. Phone उठाइए, number दबाइए 4699429888 is the number. Visit कर सकते हैं आप agfintechs.com. हाँ जी, हाँ जी। तो एक और very different सी बात है, जैसे कि ये गाना सुनने में अगर आपको बॉलीवुड नहीं लगेगा, लेकिन हमारे बहुत ही बड़े बॉलीवुड स्टार के बेटे उतर गए हैं इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। जी, ऋतिक रोशन सन एंड सुजैन सन रिहान रोशन, ही हैज मेड हिज म्यूजिकल डेब्यू विद बोथ पेरेंट्स पब्लिकली सेलिब्रेटिंग द मोमेंट। Nice little feel-good Bollywood family story between the masala items. क्योंकि ये English में गाना बनाया है इन्होंने, रेहान ने, H से ही रेहान का नाम शुरू होता है, जैसे कि ऋतिक का है। ऋतिक आप H ऋतिक नहीं बोलते हो, ऋतिक हैं, वैसे रिहान नहीं बोलते, रेहान है। एंड चलिए हमारे लिए प्राउड मोमेंट है बिकॉज वी हैव वॉच ऋतिक all our lives and now the sons have grown up and this is his music for you.

पर है ना. ओ माय गॉड, रेहान, आवर वेरी ओन ऋतिक रोशन सन ने खुद से बनाया है ये म्यूजिक, एंड ही इज द वन हु सिंगिंग इट. इट इज माइंड ब्लोइंग. एंड व्हेन सच थिंग्स हैपन, यू फील प्राउड, यू फील वाउ, किड्स हैव ग्रोन अप, एंड दैट इज रेहान. तो कहते हैं मेन आर्टिस्ट, कंपोजर, लिरिसिस्ट सब इस गाने के हैं रेहान. एंड ब्यूटिफुल, आई थिंक ही डिड अ ग्रेट ग्रेट जॉब. मोर पावर टू हिम एंड मोर पावर टू हिज पेरेंट्स हु हैव सपोर्टेड हिम इन ऑल हिज एंडेवर्स, एंड वी सपोर्ट हिम टू. सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो. यू नो, बताइए तो अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वक्त कितना बिताते हैं वो आपके साथ? 5 मिनट, 10 मिनट? लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि वो ट्रूली अंडरस्टैंड करते हैं आपके हेल्थ को, एंड दे टेक टाइम टू अंडरस्टैंड इट. पैशन हेल्थ, यू आर जस्ट नॉट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. दैट्स वॉट यू आर फॉर देम, फॉर यू, फॉर योर फैमिली, एंड फॉर द हेल्प ऑफ आर कम्युनिटी. Passion Health Primary Care, 30 minutes is all it takes to complete your annual physical, anxiety care, fibro scan for alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing and more, all are available at Passion Health. Aap kar lijiye schedule apna appointment, aaj hi, 214-666-6259 par. Book kar lijiye apna appointment, kyunki Passion Health Primary Care, your health is our passion. That is what they say. So, Rewana 4.9 FM, Fanisha Radio. एक गाना बजा रही हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी और फिर बताऊंगी क्यों बजाया मैंने इसे, ठीक है? And then we'll getting into a short break as well.

0: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
1: वी नीड टू टॉक.
2: अब क्या हुआ?
1: नथिंग, इट्स नॉट यू.
2: ओह नो,
1: इट्स द डिस्टेंस.
2: डिस्टेंस? वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट.
1: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू, इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन.
3: इरविंग, दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर. सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग. योर क्रिस्पी चिकन, लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर. सैल्स हॉट चिकन, इरविंग. सेम ऑब्सेशन, लेस डिस्टेंस.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
6: तुमसे मिलके दिल का है.
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है.

याद आ रहा है ये वो लम्हे फ्रॉम द यस्टरडेज ऑफ इमरान हाशमी, जहर फिल्म से, 2005 की जहर फिल्म से लिया गया ये गाना। और इमरान हाशमी एक्चुअली वंस अगेन छाए हुए हैं बहुत जोरों से विथ हिज मूवी आवारापन 2। और ये वाली फिल्म रिपोर्टेडली क्रॉस कर चुकी है 200 crores वर्ल्ड वाइड, बिकमिंग इमरान हाशमी फर्स्ट 200 crores सोलो हिट। सोचिए इस अब इतने जब स्टार थे उस स्टार से इस ज़माने में आके अब वो सोलो हिट दे रहे हैं जो 200 crores क्रॉस कर चुकी है आफ्टर 19 years हिज रिटर्निंग टू लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस, जो इमरान हाशमी कभी नहीं करते थे अब वो लाइव स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कह देना कि जब मौका होता है उस मौके पर हम चौका नहीं मारते, चांस पे डांस नहीं करते, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तब अचानक से वो मौका फिर मिलता है तो लगता है क्या खो दिया, जो खो सोया जो खोया वो अब मिल सकता है, दैट्स व्हाट प्रॉब्ली ही इज थिंकिंग। सो अब क्या है, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, रिविजिटिंग सॉन्ग्स फ्रॉम मर्डर, वाओ लव ऑल द सॉन्ग्स ऑफ मर्डर, कभी भी आप बजा लें, आशिक बनाया आपने, जन्नत। और उस ज़माने में जब इमरान हाशमी फेमस थे वी न्यू दैट कोई भी फिल्म उनका उठा लो द सॉन्ग्स फॉर सम रीज़न वर सो सो सो गुड कि आप एब्सोल्युटली मुग्ध हो जाए उन गानों में। पर वो पिक्चर कितनी हिट है कितनी नहीं है दैट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द सॉन्ग्स वर ऑलवेज वेरी वेरी गुड। और ये इमरान हाशमी म्यूज़िक ईरा बन सकता है और इमरान हाशमी का म्यूज़िक ईरा पर पूरे का पूरा शो किया जा सकता है, राइट? आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ बट जस्ट गिविंग यू वन अमेजिंग न्यूज़ जो मेरा ये सेगमेंट होता है फ्राइडे बॉलीवुड बज, द बजेस दैट आर हैपनिंग, क्या हो रहा है हमारे बॉलीवुड में। एक और बज है जो एक कोई गाने

0: दिस सॉन्ग इज एक्चुअली ट्रेंडिंग अ लॉट. इसके ये सीरीज के बारे में बात भी बहुत हो रही है. क्या है अगर आपको पता है तो ये आपको जता सकता है. होको से एक प्लेट ऑफ आलू टिक्की चाट. एक्चुअली मैंने ही बताया है अपने ही शो पर लास्ट वीक, एंड आई नो अ लॉट ऑफ आरजेज मस्ट बी टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दिस इज ट्रेंडिंग अ लॉट. एक बहुत ही खास सीरीज आई है हमारे ओटीटी पर, और थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ और ये भी बता रही हूँ, होको जो है यू फाउंड अ ट्रूली आइकॉनिक फूड ब्रांड व्हेन जस्ट हियरिंग इट्स नेम ब्रिंग्स बैक अ फ्लड ऑफ मेमोरीज. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट होको हैज़ बीन फॉर जनरेशंस अक्रॉस इंडिया, एंड नाउ इट्स हियर इन नॉर्थ टेक्सस. रियली अब इधर आ चुके हैं. वेदर यू हैव बीन क्रेविंग देयर लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, flavorful curries or the famous hoko cold coco that people absolutely swear by, you don't have to wait for your next trip to India anymore. Kyunki hoko idhar hi hai, 2693 Preston Road mein, suite 1000, Frisco 75034. Aap experience kar sakte hain the authentic flavors that have made it one of the India's most loved food brands. Aur ye hoko ki aloo ki chaat tikki chaat aapko mil sakti hai. Let's hear you.
1: That have made one of them.
0: Can you switch off the radio, please? I am Navneeta.
2: Yes,
0: bataiye.
2: I just did. Navneeta ji, kaise hai Sohelia?
0: All right, I'm fine.
2: I hope my guess is right. Haan. I think it's the Musafir Cafe.
0: Aapne dekhi?
2: Bahut badhiya, bahut hi achhi lagi. Dekhi, humne bahut, lekin wo end mein jaake, this is the, see,
0: this
2: my thing
0: fair.
2: Is... हाँ प्लीज, अगर आप सीजन टू रेडी करो आप, और फिर आप ये करो ना, अभी वो सीजन टू वेट करना है बस.
0: टू मच, आई टोटली अग्री. बट बहुत तड़पाते हैं ये लोग. एक तो कभी कभी अच्छा कुछ बनता है और बन जाए तो फिर ऐसे कर देते हैं. नॉट फेयर, बट ऑसम. सो यू आर द विनर ऑफ आलू टिक्की चाट. आप जाओगे होको टू एंजॉय दिस?
2: बिल्कुल हम जाएंगे. थैंक यू सो मच.
0: आप कहीं मत जाइए. आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. हमें अपने सबके लिए एक गाना बजा देती हूँ, बट डोंट गो एनीवेयर. ओके,
2: जी जी.
0: सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो. ये एक्चुअली मुसाफिर कैफे है. इसमें विक्रांत मासे, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना, दे आर रियली ट्रेंडिंग. बहुत पसंद किए जा रहे हैं तीनों के तीनों इस मुसाफिर कैफे. आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी नाइस, वेरी हार्ट टचिंग, लाइट हार्टेड सीरीज बनी है. और जैसे कि सोहेल साहब ने कहा कि एंड में जाके पता चलता है कि एक सीजन टू भी आएगा, बट काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है. आप निराश मत होइएगा. गो वॉच इट बिकॉज यू वॉन्ट टू वेट फॉर दिस नेक्स्ट सीजन. ओके सोहेल साहब, आप प्लीज़ एक बार कॉल कर लीजिए. यू विन द आलू टिक्की चाट फ्रॉम होको.

0: भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Aji, sunte ho?
4: Aji, nahi. AG, sunte hai.
5: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. Only on Funasia Radio.
0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: Floors clean,
9: check.
8: Windows clean,
9: check.
8: Kitchen clean,
9: check.
8: Air ducts clean.
9: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
10: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
11: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
12: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
13: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज।